0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: सुनील जी।
1: हाँ जी
2: सुनील जी, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। सर कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
1: यार, बहुत बढ़िया, बड़ी।
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
1: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
2: हाँ जी,
1: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई सर कोई कंडीशन नहीं है, पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते ना अपने, कोई ज्यादा।
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
1: क्या?
2: पुराना लाइए नया ले जाइए।
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला।
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
2: सर? पुराना जो आपने
1: पुराना तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
1: धुआं मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
2: अरे
1: क्या हो रहा?
2: अरे तो ये क्या
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी मैं। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना। यार कमाल कर रहे हैं आप,
1: पेट्रोल फालतू का।
3: अरे सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा, हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता।
2: सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मुझे सुनने वाले सारे पेरेंट्स जरा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की खबर आपके लिए है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, और आज की खबर
1: क्या खबर कतर
0: कुछ ये कहती है दैट कतर की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक नई स्कूल फीस पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी प्राइवेट स्कूल की फीस इंक्रीज अप्रूव होती है तो उसका असर पेरेंट्स पर तुरंत नहीं पड़ेगा। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन कतर पेरेंट्स को मिलने वाले हैं पूरे 18 मंथ्स का नोटिस पीरियड बिफोर द न्यू फीस एक्चुअली किक इन। मतलब अगर फी हाइक अप्रूव हो भी गया हो तो आपके पास 1.5 साल होगा अपना बजट प्लान करने के लिए, बच्चे को उसी स्कूल में कंटिन्यू करवाना है या किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। नो सडन सरप्राइजेस एट ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए फीस इंक्रीज अप्रूव करने से पहले मिनिस्ट्री स्कूल की एकेडमिक परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन रेट भी इवैल्यूएट करेगी। सिंपल वर्ड्स में, सिर्फ हमें फीस बढ़ाना है कहने से काम नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी अ मेजरेबल जस्टिफिकेशन। देखिए, दुनिया भर में एजुकेशन इन्फ्लेशन एक रियल चैलेंज बन चुका है। पेरेंट्स ऑफन फील करते हैं ट्रैप्ड बिटवीन क्वालिटी एजुकेशन एंड राइजिंग कॉस्ट। लेकिन कतर का ये मूव एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस समथिंग, इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसे फाइनेंशियल प्रेडिक्टेबिलिटी। और बिलीव कीजिए, देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी is often more valuable than affordability itself, क्योंकि जब आपको पहले से पता हो कि ठीक है 18 महीने बाद क्या होने वाला है तो पैनिक की जगह जाहिर सी बात है लोग प्लानिंग करने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है। मतलब साथ ही साथ अगर फीस इंक्रीज भी हो रही है तो काफी अच्छा वक्त दिया है फॉर द पेरेंट्स आउट देयर। तो सुन लिया ना आपने, मैं हूँ आप फ्री आपके साथ माइक से दिल तक, राइट अराउंड मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाहिद मालिया की आवाज में ये गाना मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा खूबसूरत लगता है. ऑफ कोर्स दिलजीत पाजी ने भी ये गाना गाया है, बट आई थिंक सो एक अलग ही किस्म का दर्द है मेरे ख्याल से उनकी आवाज में, वेर ही इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर सम गर्ल. आफरीन आपके साथ, ये कुड़ी तो आपके साथ जुड़ गई है. और इस कुड़ी के पास है तापमान का हालचाल. यस, देखते हैं यार कतर का आज का वेदर क्या कहता है.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल, वेदर ये कह रहा है जो पिछले 10 दिन से कहता आया है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम काफी दिन से यही चल रहा है और मिनिमम जो है 33 डिग्री सेल्सियस पर है. एक्चुअल जो आप महसूस कर रहे हो राइट नाउ वो 34 डिग्री सेल्सियस है. बहुत ही क्लियर स्काइज है आज के दिन पर. और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो कल जैसी है, वही मैं कहते आई हूँ, वही 38% पर है. हवाएं धीमी धीमी सी चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर पर हवाएं चल रही है. ऑल इन ऑल इतना ही कहना चाहूंगी भाई कि कल मैं दोपहर के वक्त पर तकरीबन 11 से लेकर 3 बजे तक मैं बाहर थी. उसके बाद उफ, I just went home and I crashed. मतलब वो 4 घंटे बाहर के कुछ ना कुछ काम में मैं बिजी थी एंड इट वॉज सो एग्जॉस्टिंग. मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई अगर कोई ऐसे काम है आपके जो आप अवॉइड कर सकते हो इस वक्त पर, जो है 3 बजे के बाद करो. क्या होता है ना कि भाई आप इतने ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हो और फिर सर दर्द, और अगर आप माइग्रेन के शिकार हो तो बस खत्म है फिर तो आपके कुछ भी नहीं. सो बस अपने काम को टाइम के हिसाब से सारे शेड्यूल कीजिएगा, पानी पीते रहिएगा और सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ दिन में एक बार नहीं लगाते हैं, सनस्क्रीन को 2 से 3 बार हर 3 घंटे में रिपीट किया जाता है. आप समझ आया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ.
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब. फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813.
0: एंड येट अनदर अरिजीत सिंह की आवाज में.
3: मजबूर क्या कीजिए,
0: हाय बर्फी का ये गाना. आपको खूब रास आने वाला है और आपका दिन बहुत खूबसूरत जाने वाला है. एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक. आप शीन के साथ इट्स हॉट.

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए हैं, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
4: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
3: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अभिजीत और सौम्या राव की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी धूम राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और याद है थ्री इडियट्स का वो सीन जब रैंचो ने कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ हो रही बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी? तब हमें लगा था कि ये सिर्फ एक मूवी का सीन है, लेकिन असल जिंदगी में भी कई बच्चे हर रोज किसी न किसी फॉर्म में बुलिंग फेस करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके पास हर बार कोई रैंचो नहीं होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन है आपके साथ और इसीलिए मुझे ये लगता है कि आज की खबर बहुत ही मीनिंगफुल है। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर 54 गवर्नमेंट स्कूल्स में मेंटल हेल्थ प्रमोशन और एंटी बुलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए वर्कशॉप्स होने वाले हैं, काउंसलिंग सपोर्ट होगी, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और पेरेंट्स के लिए भी गाइडेंस सेशन रखे जाएंगे। और फ्यूचर में इस इनिशिएटिव को सारे गवर्नमेंट स्कूल्स तक एक्सपांड करने का प्लान है। देखिए मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन में और आज के जनरेशन के स्कूल एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ना यही है। हमारे टाइम पर अगर कोई अपसेट होता था तो कहते थे कि आज स्ट्रांग बनो। आज स्कूल्स कह रहे हैं पहले बताओ तुम ठीक तो है, ठीक है। और ये सिर्फ तो काइंडनेस नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ स्मार्ट थिंकिंग। और कहीं ना हम स्कूल की बुलिंग को मजाक छोट समझ के हमने खुद भी फेस किया होगा और हमें लगा होगा कि भाई ये कहाँ नुकसानदायक है कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कई बार होता है, बहुत सारे बच्चों पर असर होता है इसका और ये असर ना लॉन्ग टाइम रह जाता है, मतलब बड़े होने तक रह जाता है कि यार बचपन में किसी ने हमारा इस तरह से मजाक उड़ाया था सबके सामने। तो भाई अगर कोई बुलिंग करता है तो सतर्क हो जाओ, और कई बुलिंग का शिकार है तो भाई आपके आसपास में बहुत सारा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आप गाइडेंस मांग सकते हो। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक। और खूबसूरत दिन खूबसूरत आवाज के साथ शुरू करते हैं। लकी अली और रम्या की आवाज में कहो ना प्यारे से ये गाना। आई जस्ट लव द वाइब ऑफ द सॉन्ग यार, मन कर रहा है कि बस गाड़ी लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाऊं। और ये गाना सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ऑफिस ऑफिस नहीं जाते, कहीं चले जाते हैं, है ना।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: वेलकम टू द जंगल नई वाली मूवी जो है, वो आने वाली मूवी का नया वाला गाना, वैसे तो पुराना ही गाना है, ऐसे पैकेट में डाल के, नए पैकेट में डाल के पेश किया गया है। सो वेल, मैं हूँ आफरीन, आपके साथ मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 7:04 की तरफ।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, जब ये डायरेक्टर कोई मूवी लेकर आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है थोड़ा सा थम जाता है कि भाई इनकी मूवी आ गई है ना, तो बस दिल में वो जगह एक और खाली करनी है ये मूवी के लिए। वेल, मैं बात कर रही हूँ इम्तियाज अली के बारे में। एंड इम्तियाज अली की आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, अब भले ही वो रॉक स्टार ही क्यों ना हो। इनफैक्ट लैला मजनू जब रिलीज हुई थी तब उसे इतनी ज़्यादा प्रेजेस नहीं मिली थी, जब कुछ साल बाद लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिली एंड इट्स गॉट इट्स राइट क्रेडिट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड जब भी मेटी क्यों ना हो, तमाशा ही क्यों ना हो, अमर सिंह चमकीला, लव आजकल, जब हैरी मेट सेजल एंड सो मेनी मूवीज़ यार, मतलब इम्तियाज अली की मूवीज़ के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से डेवलप हो जाते हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से इट स्टेज इन बॉलीवुड फॉर एवर आई फील। एंड ऐसे ही जब इम्तियाज अली लेकर आते हैं ना कोई मूवी, तो स्टार कास्ट भी अच्छा होता है और म्यूजिक डायरेक्टर भी अच्छी होती है। एंड वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज लेटेस्ट रिलीज एंड दैट इज़ मैं वापस आऊँगा। और मैं वापस आऊँगा का स्टार कास्ट ही इतना फिनोमिनल है, मतलब मैं पहले नाम लेना चाहूँगी नसीरुद्दीन शाह की। इट्स वेरी रेयर आजकल के नसीर साहब को हम मूवी में कोई स्ट्रॉन्ग किरदार प्ले करते हुए देखते हैं, और जैसे ना वक्त गुजर रहा है ना, मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू गो एंड वॉच दीज लेजेंडरी एक्टर्स ऑन बिग स्क्रीन एंड टू वॉच मैं वापस आऊँगा। आई थिंक सो नसीर साहब इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आपने जाकर इन्हें देखना है। क्या बस आप ट्रेलर देखोगे ना, यू विल जस्ट फील गूज बम्स, बिकॉज अलॉन्ग साइड नसीर साहब दिस दिलजीत पाजी ऑल्सो, जब भी वो भी आते हैं ना स्क्रीन पर, बहुत जेन्युइन लगते हैं यार। मतलब ये बंदा एकदम कैरेक्टर को घुलकर पी गया है एंड ही इज लिविंग दैट कैरेक्टर एवरी टाइम व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन। दिलजीत पाजी है, उसके अलावा वेदांग रायना, ही इज अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर आई फील इन दिस मूवी। आप जब ट्रेलर देखोगे समझ जाओगे। एंड अलॉन्ग साइड देर आर रजत कपूर और फिर शर्वरी है, शर्वरी वाघ है। तो बस ऐसे ही दिस मूवी इज द स्टोरी ऑफ लव, लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंग, रूटेड इन द पार्टीशन एरा माइग्रेशन। मतलब यार इम्तियाज अली ना, प्यार भी होगा, दिल भी टूटेगा, और बस आप के दिल में एक, मैंने पहले ही कहा कि जगह बनकर रह जाएगी मूवी, दैट इज वॉट इज मैं वापस आऊंगा। सो हाईली रिकमेंडेड यार, गो एंड वॉच इट, एंड गो एंड वॉच इट इन बिग स्क्रीन्स, बड़े पर्दे पर देखो, नसीर साहब है ना। चलिए उसी मूवी का अगला गाना, What a beautiful song, निलंजना घोष की आवाज में एंड द एक्टर हिमसेल्फ इज सिंगिंग, वेदांग रायना की आवाज है ये, वो गाने भी गाते हैं, सुन लो, बहुत मजे का गाते हैं।

0: Mirci. Iskaba na puskaba na sakaba na. Rabala. Burga, burga. Na vidba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम प्रॉब्लम।
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजू?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी। ओके स्वीटहार्ट बाय। हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
1: गोलगप्पे नहीं होते हमारे,
2: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो।
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है।
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए।
3: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
1: आपकी आवाज में काफी कुकुड़कू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर Pizza Partner, Papa John's special offer. Buy one large pizza and get one small pizza free. Exclusively on the Papa John's app and website. Order, earn and repeat with Papa Rewards. Download the Papa John's app today and enjoy more rewards.
1: Eyewear partner Al Fahad Optics. Clear vision, stylish fashion. All at perfect price. Free eye checkup at any branch. Direct partner with Al Goot Insurance. Visit Al Fahad Optics all over Qatar. Call 555-6189.
2: रेस्टोरेंट पार्टनर चस्का रेस्टोरेंट चाइनीज मुंबई हो या नॉर्थ इंडियन का क्रेज बजट में चाहिए टेस्टी डिश तो चलिए चस्का रेस्टोरेंट जो है एस दानो एसिस में स्वाद भी जबरदस्त और प्राइस भी मस्त
1: मॉल पार्टनर अबू सिद्रा मॉल शॉपिंग डाइनिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन अबू सिद्रा मॉल हैज इट ऑल अबू सिद्रा मॉल फॉर एवरी डे एंड एवरी ओकेजन
2: Hygiene partner, hygiene. From clean skin to healthy life. Experience total protection with hygiene sanitizer, wet wipes and body wash. Hygiene, pure protection.
3: Sugar-free partner, Tropicana Slim. Looking for a sweeter life without the sugar? Tropicana Slim is your perfect partner. Enjoy the same great taste with zero sugar. Tropicana Slim.
4: Jewelry partner, Sky Jewelry. हर पल को बनाए खास स्काई ज्वेलरी के साथ एलिगेंट डिजाइंस, डाजलिंग कलेक्शंस और हर बजट के लिए परफेक्ट ज्वेलरी शॉप नाउ एंड एंटर द मेगा ड्रॉ ऑन जून 23rd फॉर अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू लेक्सस कार स्काई ज्वेलरी डिजाइन फॉर जनरेशंस
5: Refreshment partner, Baladna Milk, Laban Yogurt. Experience the fresh, creamy taste that Qatar loves. Refreshing every moment with every sip and spoon.
0: Fragrance partner Faridi Perfumes Gallery. Make every moment unforgettable with premium Arabic and French fragrances crafted for every style. Visit our Al Saad branch, Faridi Perfumes Gallery. Luxury you can wear. Visual media partner Rehab Media.

परिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर, साथ है आपके साथ सिंपली आफरीन के साथ। और देखिए भाई, फुटबॉल का नशा थोड़ा सा कम ही सही लेकिन हमारे कतर में फिर से लौट ही गया है, क्योंकि यार यहाँ पर तो मैचेस नहीं हो रही है ना, लेकिन वो जो 2022 में फुटबॉल का नशा जो एक बार चढ़ा दिया था ना, तो काफ़ी सारे लोग जैसे मेरी तरह, मतलब मैं पहले फुटबॉल देखती नहीं थी कतर आने से पहले, और कतर आने के बाद में यार फुटबॉल के बारे में इतनी जानकारी मिली, एंड देन आई गॉट हुक्ड ऑन टू इट। मतलब मैं, ऐसा एक स्पोर्ट है जो मैं कंटिन्यूसली देख पाती हूँ, मतलब मी बीइंग नॉट एट ऑल इनटू स्पोर्ट्स, आई स्टिल लाइक फुटबॉल। सो वेल, फुटबॉल वर्ल्ड कप का नशा तो चल ही रहा है इतना जबरदस्त तरीके से। सो वेल, बता दूं कि अगर आप हार्डकोर फुटबॉल फैंस है या फिर आपकी कोई फेवरेट टीम खेलने वाली है और आपको देखना है, तो बता दूं आज के कौन से मैचेस है। आज जो है इक्वाडोर वर्सेस कोट द'इवोर, ये अच्छा पता है, ये कोट द'इवोर जो कंट्री है ये मुझे हाल ही में पता चली है, सीरियसली दिस इज अ अफ्रीकन कंट्री, और मुझे तब पता चली है जब मैं हज पर गई थी ना, वहां पर ये कंट्री के लोग बहुत नजर आए मुझे, दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज फुटबॉल मैच जो है स्वीडन और ट्यूनिशिया के बीच में भी है, ये शाम के 5 बजे है, ये मैं कतर के टाइमिंग्स फिलहाल बता रही हूँ। यस, उसके अलावा स्पेन वर्सेस काबो वर्दे, मतलब देखिए भाई इतने छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज भी इतने बड़े लेवल तक पहुंची है, ऑल ऑन देयर ओन मेरिट, इट्स इन इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग यार फॉर देम। उसके अलावा बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट, ये भी मैच है, और ऐसे ही यहाँ पर रोज मैचेस तो हो ही रही है, लेकिन जैसे मैं अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बता रही थी ना, वैसे ही कल भी कोराकाओ वर्सेस जर्मनी, इनकी मैच हुई थी, और ये जो कंट्री है इन्होंने कल जर्मनी ने बहुत बुरी तरह से इन्हें हराया नहीं, लेकिन इन्हें ऐसे फील हुआ है दैट पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप में एक गोल किया था कोराकाओ ने, दैट इट सेल्फ इज अ ह्यूज थिंग यार, मतलब कमिंग टू दिस स्टेज वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज में से ये छोटी छोटी अफ्रीकन कंट्रीज इस बार जब वर्ल्ड कप में पहुंची है ना यार, उनके लिए जोरदार तालियां तो बजनी ही चाहिए, लाइक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर देम, बट हैट्स ऑफ विद दिस। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, एंड अमित त्रिवेदी की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम द मूवी देवदी, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
1: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है.
0: Catch Officer Brown.
3: Officer Brown.
0: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: बनी दयाल की आवाज में टू स्टेट्स का ये गाना एंड टेंशन नॉट बंधु हो, आज कोई लोचा होने का चांस ही नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग कतर, वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है और ये वो वक्त है जब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। यस, ऑल द बॉलीवुड फैंस आउट देयर सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और आज ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का बॉस, क्योंकि क्या है ना, आज मंडे है तो आज माफ है। माफ नहीं मतलब गेम खेलेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीके से। वैसे मूवी तो काफी पॉपुलर है लेकिन डायलॉग शायद ही आपने सुना होगा। चलिए सीन सुना रही हूँ, आपने गेस करना है आखिरकार आफरीन कौन सी मूवी का ये सीन सुना रही है। सो रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट
2: शैतान को मारा, जो इन फिरंगियों को मारा, शाबाश, गेट अप बैक, तोड़ दे डंडी।
0: ओके दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं सुनाएगी आफरीन। आप सोच रहे हो भाई ये क्या था आफरीन, अभी तो शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। लेकिन मेरे खत्म होने से पहले यहाँ पर आंसर्स आने भी शुरू हो चुके हैं। 5000196 इज माई नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर। और आपको फिर से सुनना है, मिस हो गया आफरीन यार, इतने जल्दी से सुना के खत्म भी कर लिया। चलो ठीक है, फिर से सुनाती हूँ आपको क्योंकि बहुत छोटा सा क्लिप है ये। शाबाश, चलो अभी आप भी जवाब दो मुझे 5000196। बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मूवी है ये। अब क्या होता है ना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसके बारे में बहुत और डिटेल्स देना शुरू करूँ ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए 5000196 इज माई नंबर, वन ऑफ द आइकॉनिक मूवीज ऑफ बॉलीवुड जिसने पहली बार ऑस्कर में एंट्री ली थी। दैट्स इट आफरीन, इससे आगे नहीं बोलना। मधुमंती बागची और सुमंतो मुखर्जी की आवाज में ये गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: ऐसे कैसे 7.5 घंटे की मूवी को काट कर 3 घंटे में बनाया गया होगा, सोचो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की जो मूवी की बात यहाँ पर हो रही है ना भाई, बस इट्स नॉट जस्ट अनदर मूवी ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये वो मूवी है जिसने पहली बार बॉलीवुड को ऑस्कर तक पहुंचाया था। एंड अपने आप में ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी एट दैट टाइम यार, सोशल मीडिया थोड़ी ना था। वेल, इतनी बातें जब आफरीन कर रही है अबाउट दिस मूवी, विच मूवी इज दिस, ये तो भाई आपको डायलॉग के बाद ही पता चलेगा, राइट? सो लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट यहाँ पर हम खेलने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको सीन सुनाने वाली हूँ और आपको गैस करना है। और अभी भी आप मैसेज कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है ना, कि कौन सी सीन है, 5000 1896 कौन सी मूवी है। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: शैतान को मारा, जो इन फिरंगी को मारा, शाबाश, गेट अप बैक, तोड़ दे डंडी।
0: वेल, देखो मूवी इतनी पॉपुलर है, मैंने मूवी की बस ये हिंट जो दी ना उससे पहचाना है आपने ऑस्कर के बारे में, डायलॉग से तो कोई पहचाना नहीं है आपने, सही है ना। सो वेल, कौन सी मूवी है, लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम आवर लिसनर्स। कम दोस्त,
3: हाय आप,
0: हाँ जी,
3: आई बिलीव दिस गुड मॉर्निंग लगान फीचरिंग आमिर खान।
0: ऑलराइट,
3: दिस इज केपी वशिष्ठ, थैंक यू।
0: Thank you so much.
4: Hi, good morning, Afreen. How
0: are
4: you?
0: Very good morning.
4: That look, that scene was from movie Lagan.
0: That is right, Sharik.
5: Hi, Afreen. This is Chetan here.
0: Hey, Chetan.
5: Good morning, Mirchi. The dialogue is from movie Lagan. First movie to enter in the Oscars.
0: That is absolutely right. Lagan ka ye dialogue. Mohammad Yusuf Khan, aur yahan pe bahut sare logon ne message kiya hai. Mustafa ka message hai. Then I have your Aftab ka message aaya hai. Ye kaun hai bhai? Abu Riza ka message hai. Sameer ka message hai. Everyone saying that this movie is Lagan. Aur dialogue to aapne itna kuch khas suna nahi hoga. Itna koi popular tha nahi. Lekin Lagan ke bare mein aaj baatein isliye ho rahi hai bhai. आज का ही वो दिन था 15 जून, बिल्कुल 15 जून 25 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई थी। और तब किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये मूवी बॉलीवुड की एक ऐसी लेजेंडरी आइकॉनिक मूवी बनेगी जो ग्लोबली अपना नाम ना रोशन करेगी। सो लगान के बारे में मजेदार बातें मैं बताऊंगी कुछ ही देर में। आफरीन है तो ट्रिविया लेकर आएगी ना, ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता था। और एक ऐसा इंसान जो लगान मूवी नहीं बनना चाहिए इसकी पूरी कोशिश कर रहा था, वो कौन है थोड़ी देर में बताती
6: हूँ।
0: उदित नारायण, अलका याग्निक और सुखी पाजी की आवाज में है मितवा, ये गाना सुन ले और एंजॉय कर।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मेरे बॉस की सारी गलती की ओनरशिप हर बार मुझे ही लेनी पड़ती है, क्या करूं?
1: अरे तो बॉस को बोल दो कि ये कंपनी भी उनकी एक गलती है।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी विकी डोनर, और बात चल रही थी अबाउट द मूवी लगान, जिसे आज के ही दिन एग्जैक्टली 25 साल पूरे हो रहे हैं। और वो कौन था जो बिल्कुल चाहता था कि ये मूवी बिल्कुल ही ना बने, और फिर आगे चल के ये मूवी का बहुत अहम हिस्सा भी बन गया। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और एक ऐसा ट्रिविया लेकर आई हूँ आपके लिए लगान मूवी से जुड़ा हुआ। आमिर खान की ये मूवी जो उस वक्त पर इतनी अनकन्वेंशनल मूवी थी कि लोगों पर डाउट था, एक बड़ा रिस्क था कि यार ये मूवी करना सेफ है या नहीं, और जो लोग ये मूवी के साथ जुड़ रहे थे जाने अनजाने में, वो खुद के डिसीजन पर भी थोड़ा सा डाउट रख रहे थे कि भाई ये मूवी बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है, किसी को भरोसा नहीं था। इनफैक्ट आमिर खान खुद ये मूवी बहुत रिस्की समझते थे और काफी टाइम तक

0: ना करते रहे, लेकिन वो कौन शख्स था जिन्होंने पूरी कोशिश की भाई भाई नहीं भाई ये मूवी मत बनाओ। चलिए जरा सुनते हैं उन्हीं से। मैं बात कर रही हूँ जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं इस मूवी के, लेकिन कहानी क्या थी भाई?
1: मुझे आशुतोष साहब ने जब कहानी सुनाई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है डोंट्स की, कि क्या क्या नहीं करना चाहिए पिक्चर में, वो सब जमा करके इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई। भाई उस जमाने में कहते थे गांव में फिल्म नहीं, गांव की फिल्म नहीं चलती है, ये गांव की है। हीरो धोती पहने हुए तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है लोगों को, वो हीरो धोती पहने हुए है। क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उसके ऊपर इन्होंने बनाए। और वो ब्रिटिश टाइम ये पीरियड फिल्में नहीं लोगों को अपील करती, पीरियड मतलब एक लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने कि ये काम नहीं होते ना, अच्छा हम ही करेंगे। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो ये मेरे घर आए, कहने कहिए क्या है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये पिक्चर मत बनाओ। तो कहले क्यों, तो मैंने सभी ने अच्छी तरह समझाया, मगर शुक्र है कि समझे नहीं।
0: बिल्कुल शुक्र है कि वो समझे नहीं और वो आगे बढ़कर उन्होंने ये मूवी बनाई, और सिर्फ बनाई नहीं इस मूवी को ग्लोबल स्तर तक भी पहुंचाया, यानी ऑस्कर में जाने वाली ये पहली हमारी इंडियन मूवी थी जो इतनी आगे तक गई थी। भाई यार व्हाट अ मूवी। अभी भी मैंने, जब मुझे याद है कि मैंने ये मूवी मेरी नानी के साथ में थिएटर में देखा था ना, तब आमिर खान का कान फट गया था, अगर याद है आपको, वो एक सीन था जब बॉल लग जाता है एंड माई नानी वॉज इन टीयर्स, अल्लाह इसका क्या होएगा, मैच कैसे जीतेंगे, इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी मेरी नानी, और अभी तक मुझे याद है ये। मधुबन में जो कन्हैया किसी को, अगर मैं बातें करने बैठू ना लगान के बारे में तो पूरा शो में बात कर सकती हूँ। देयर इज सो मच टू टेल यू अबाउट दिस मूवी, लेकिन आगे बढ़ना है। आशा ताई उदित नारायण और वैशाली की आवाज में गाना सुनाते हुए, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskrabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjetva la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने ही हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए. आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बनकर कूलली तू करता था. कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे.
3: बकवास बनकर
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: शराब
1: उन्हें.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका. कोई पेशेंस चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंस चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल में पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार. इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव, कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है. मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो. मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

आवाज में ये गाना राइटर अनमची। और देखो जी, ये अगर सही चीज मिल जाए तो फिर जिंदगी में और क्या चाहिए। गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है आपके साथ। और देखिए, जिंदगी में अगर सही एक्सचेंज रेट मिल जाता है ना, तो सोचो आपकी कितनी ज्यादा सेविंग्स होती है और कितनी ज्यादा आपका फायदा होता है। सो बस आज का एक्सचेंज रेट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए, आज का एक्सचेंज रेट जो है वो ये कह रहा है, एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 26.05 रुपीस। वही जनाब, पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.73। बांग्लादेशी टाका की बात करूं तो 33.76 पर है। श्रीलंकन रुपीस एट द सेम टाइम इज एट 92.09। और अगर एक कतरी रियाल के बदले नेपाली रुपीस की बात करूं तो इट इज एट 41.73। ये थी आज की एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों खुशियां। और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1 माइक सुदुल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Dosti kai kusul hai madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, जब हाईवे मूवी का ये गाना बजने लगता है रेडियो पे सडनली, तो कोई चांस है कि कोई शख्सियत इसे बदल दे? चांस ही नहीं भाई, आई थिंक सो। अगर कोई लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स बने ना जो गाड़ी सुनते हुए मजा आता है, उसमें ये नंबर वन की लिस्ट में आने चाहिए। फिलहाल तो वही गुड मॉर्निंग कतर, मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट टू रन विच मॉर्निंग्स, लेकर आई हूँ एक ऐसी मूवी फिर से जो आपको सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर दे। भाई क्या कर रही है आफरीन सुबह सुबह हमारे, एक्सरसाइज करा रही है ब्रेन की। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, इसी से तो आपका दिन और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, राइट? सो वेल, कौन सी मूवी की बात हो रही है आज ये तो आप बताओगे यार। तो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक मूवी की ऐसी, जिससे आपको गेस करना है कि ये कहानी कौन सी मूवी की है। सो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये कहानी सुनो। एक डेंजरस डाकू है जो पूरे एरिया में अपना आतंक फैला देता है। पुलिस और सिस्टम उसको रोक नहीं पाते। फिर एंट्री होती है एक ऐसे ग्रुप की जो हीरोज कम और रिटायर्ड सोल्जर्स ज्यादा लगते हैं। ये वो फौजीज है जिनके नाम पहले इज्जत से लिए जाते थे, पर एक फील्ड मिशन के बाद उनकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल चुकी होती है। सालों बाद उन्हें एक मौका मिलता है अपना नाम साफ करने का। एक गांव उनसे मदद मांगता है। पहले तो वो लगता है कि ये लोग खुद को संभाल ले वही काफी है, कोई गुस्से वाला, कोई सिनिकल, कोई थका हुआ, कोई सिर्फ पास्ट में जी रहा है। पर धीरे धीरे पूरी टीम फिर से सोल्जर मोड में आ जाती है और इन सब के बीच में एक ऐसा आइटम नंबर आता है जिसकी वजह से ये मूवी अब तक आपको याद है, ना कि इसकी कहानी की वजह से। बताइए आफरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है? 5000 1896 इतना बता दो भाई। ये एक 90s की मूवी है और यहाँ पर किसी का मैसेज आ चुका है। ये कौन है? ये चाली है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। वेल, यहाँ पर रोहित का भी मैसेज आया है एंड यू आर ऑल्सो राइट। बस इसी तरह से आप भी फटाफट से मैसेज करो। 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीन वाइल माइक से दिल तक आफरीन के साथ अगला गाना एंजॉय कर ले।
2: दिल का दरिया
1: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चल लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
0: अभी कॉल करें 3100-0813.

देखो मेरे ख्याल से जमाने लग जाएंगे लेकिन लोगों को मेट्रो के गाने समझ नहीं आएंगे। इतने खूबसूरत गाने फिलहाल शाश्वत सिंह और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपको ये जमाना लगे मैंने गाना सुनाया था। एंड अगर आप ओरिजिनल वाला मेट्रो देखो या मेट्रो इन दिनों देखो राइट नाउ जो आई है, ऑल द सॉन्ग्स आर सुपर क्लासिक। यू शुड हैव अ गुड म्यूजिक ईयर टू रियली अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और एक मूवी की कहानी लेकर आई थी आपके लिए। आपने गेस करना था कि आखिर ये कौन सी मूवी है। मूवी जो है ये 90s की थी और इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। और चलिए वह कहानी सुन ले फिर उसके बारे में बात करेंगे अबाउट दिस मूवी। सो हियर इट गोज। एक डेंजरस डाकू है जो पूरे एरिया में आतंक फैलाता है। पुलिस और सिस्टम उसे रोक नहीं पाते। फिर एंट्री होती है एक ग्रुप की जो हीरोस कम और रिटायर्ड डिस्ग्रेस सोल्जर्स ज्यादा लगते हैं। ये वो फौजीज हैं जिनके नाम पहले इज्जत से लिए जाते थे पर एक फील्ड मिशन के बाद उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी होती है। सालों बाद उन्हें एक मौका मिलता है अपना नाम साफ करने का। एक गाँव उनसे मदद मांगने लगता है। पहले तो लगता है कि ये लोग खुद को संभाले वही काफी है। कोई गुस्से वाला है, कोई निकल, कोई थका हुआ तो सिर्फ कोई पास्ट में जीने वाला। पर धीरे धीरे पूरी टीम फिर से सोल्जर मोड में आ जाती है और इन सबके बीच में एक ऐसा आइटम नंबर है जिसके लिए ये मूवी अभी तक आपको याद है। और मेरे ख्याल में ये आइटम नंबर की वजह से ही आपने ये गाना पहचाना है। कौन सी मूवी की बात कर रही है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, जाहिद, अबरार रजा, रोहित, ताहिर, देन आई हैव हू इज दिस विवेक, और कौन है ये, नियाज और आजाद। सभी का एक ही कहना है चार्ली कि आफरीन जो मूवी की बात कर रही हो तुम, इसका नाम है चाइना गेट। यस, चाइना गेट का वो गाना, उर्मिला माटुंगकर का वो अंदाज, वो अदाएं, हाउ कैन यू फॉरगेट। आई डोंट थिंक सो वी ऑल वॉच दिस मूवी बट वी नो दिस मूवी फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। अलका याग्निक की आवाज, शंकर महादेवन एंड विनोद राठौर। और मजे की बात यह है कि उर्मिला का जो अवतार था इसमें, स्पेशली द फेस ज्वेलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट फेस ज्वेलरी बिकॉज शी हैड समथिंग ऑन हर हेड, इन हर इयर्स, गले में सो मच ज्वेलरीज, एंड दैट्स व्हाट मेड द सॉन्ग आइकॉनिक अलोंग विद द ठुमके। माइक से दिल तक आफरीन के साथ एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है, क्या करूं?
1: Oh my god, आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: आनंद राजानंद रुबाई की आवाज में नए वाले वेलकम टू द जंगल का गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और मैं अक्सर यही कहती हूँ कि भाई वही पुराना गाने को नई पैकेजिंग देकर हमें पेश किया गया है। सो दैट्स व्हाट इट इज, वेलकम टू द जंगल का ये गाना मिर्ची घड़ी का इशारा 9:05 की तरफ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए, हम कल से एक इस नए सफर पर जाने वाले हैं जिसे कहते हैं एक नया साल। अब नया साल अक्सर काउंटडाउन और रेजोल्यूशन से शुरू होना जरूरी नहीं है, ये वो नया साल है जिसे कहते हैं द इस्लामिक कैलेंडर। जी हाँ, कतर कैलेंडर हाउस के मुताबिक 16 जून से शुरू हो रहा है इस्लामिक न्यू ईयर यानी फर्स्ट मुहर्रम। दिस इज 1448 हिजरी। जी हाँ, और देखिए एक फैसिनेटिंग बात यह है कि मुहर्रम का जो महीना है इसे हम शुरू करने वाले हैं, ये पहला इस्लामिक ईयर और इस्लामिक कैलेंडर। और मुहर्रम का मतलब ये होता है द सीक्रेट मंथ। जी, ये उन चार महीनों में से एक है जिनको इस्लाम में स्पेशली सीक्रेट माना गया है, इसलिए हिस्टोरियंस इसे द मंथ ऑफ पीस बिफोर एक्शन भी कहते हैं। वेल, मैं आपको बता दूं, कतर कैलेंडर हाउस के हिसाब से मुहर्रम का क्रेसेंट मून 15 जून की सुबह पैदा होगा और सनसेट के बाद लगभग 40 मिनट्स तक नजर आएगा, जिसके बाद ऑफिशियली नया हिजरी साल का आगाज होगा। तो बस आपको ये नया साल सभी को बहुत बहुत मुबारक, और बस इसी तरह से ऊपर वाले की बस रहमत बरकत हमारे पर यूं ही बरसते रहे और हमें ज़रूर दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La virba, la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello?
3: Hello, Sunil ji.
2: Haan ji.
3: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार, ये तो बहुत
3: बढ़िया. तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा.
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी, वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे
2: क्या हो रहा?
3: अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी मैं. वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
2: हमें नहीं चाहिए पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
3: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: दोस्तों, कतर की एक ऐसी जगह जो आपकी और मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन जैसे गर्मी आ जाती है ना कहीं हम इसे भूलने लग जाते हैं। लेकिन ये जगह एंश्योर करता है कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। और वो कैसे? वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। बात हो रही है मेरी फेवरेट वाली जगह यानी मीना डिस्ट्रिक्ट यानी ओल्ड दोहा पोर्ट के बारे में, जहां मैं अक्सर आपको मिलती हूँ। स्पेशली अगर ठंडी का मौसम है तो हाँ, मैं मेरी गाड़ी ले जाकर वहां पर पार्क कर देती हूँ और बस अपने गाने सुनते हुए मैं बस वो पूरे एरिया को ना बहुत इंजॉय करती हूँ। जस्ट लव द मिलू ऑफ दिस प्लेस। सो वेल, ये जगह गर्मी में ना ज्यादा लोग वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे, तो इसीलिए गर्मी के वक्त पर अब व्हीकल्स जो है वो मीना डिस्ट्रिक्ट के रोड, यानी अगर आप देखोगे वो एक फिश मार्केट है और फिर स्टेयर्स है, दिस इज स्ट्रीट, एंटायर स्ट्रीट कलरफुल स्ट्रीट है जहां पर आप चलते हो। वहां पर गाड़ियां जनरली नहीं अलाउड होती है, लेकिन अब से यानी 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर यहां पर गाड़ियां अलाउड रहेगी, यानी व्हीकल्स को एक्सेस भी रहेगा। साथ ही साथ पार्किंग जो है वहां के रिटेल और डाइनिंग आउटलेट्स के बिल्कुल करीब में आप लगा भी सकते हो, ताकि आपका जो वॉकिंग डिस्टेंस है इस गर्मी में वो बिल्कुल कम हो जाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि इसका जो वक्त है, द रोड एक्सेस जो है, ये 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही होगा। एंड इनफैक्ट मजे की बात, मीना डिस्ट्रिक्ट में वैले पार्किंग भी जो है वो अभी आधी हो गई है रेगुलर रेट से, बस ये समर सीजन के टाइम पर, ताकि यार ये जगह को आप भूल ना जाए और ये जगह का मजा जो है, जो लुत्फ है, वो हमेशा आप लेते रहे। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच खुद की इम्पोर्टेंस भूल ना जाना ये भी तो जरूरी है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोगों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। और इसी खूबसूरत ख्याल पर बशीर बदर साहब का ये शेर आपके लिए।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर में मिल जाए तो दरिया दरिया नहीं रहता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही है इन्होंने। रिश्ते जरूर रखिए, लेकिन इतने में मत भूल जाइए कि आप अपनी पहचान ही मिटा दे। हर दरिया की अपनी रवानी होती है और हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। माइक से दिल तक, आफरीन के साथ, राइट ऑन विच्री, इट्स हॉट।

0: Bali Brahmat ki awaaz mein ye khoobsurat sa 90s indie pop ka ye gaana, which is so beautiful, yani matlab wo time yaad aata hai jab hum na कॉलेज में थे, या फिर इवन इफ वी वर इन स्कूल, मोस्टली ऐसे गाने ना हमें कॉलेज में ज़्यादा डेप्थ देते थे और ज़्यादा समझ आते थे. कुछ याद आया आपको कि आप अकेले में हो और एक गाने सुन रहे हो और कितना एंजॉय कर रहे हो? वेरी गुड मॉर्निंग, सिंपली आफरीन का साथ है राइट इन ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, इतने दिन से ये चर्चा चल रहा है हमारे यहाँ पर और तैयारियाँ चल रही हैं, सो फाइनली द डेट इज आउट जब मिर्ची मॉमी का फाइनल होने वाला है. यस, यू हर्ड इट राइट. एंड इफ एनी मिर्ची मॉमी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, यू हैव टू मैसेज मी 5000196 व्हाट्सएप पर कि अगर आप प्रीवियस कंटेस्टेंट भी हो, अगर आप मुझे अभी फिलहाल सुन रहे हो, आई एम श्योर आपके बहुत सुनहरी यादें याद आपको सारी लौट आ गई होंगी. और जो अभी के हैं, ऑल द वेरी बेस्ट यार. ये जो डेट है इसकी, ये जो फाइनल होने वाला है, ये 20th of June को होने वाला है. यस, बस कुछ ही दिन, यानी आज से एग्जैक्टली कहा जाए तो 4 दिन बाद मिर्ची मॉमी सीजन 5 का जो क्राउन है वो किसी नई मॉमी पर आने वाला है. एंड वी आर सुपर एक्साइटेड. एक बात तो ये है कि एज अ ऑडियंस हमें बड़ा मजा आता है देखने के लिए कि यार कितनी मस्त तरीके से तैयारी करके आती है, किस तरह से वो स्टेज पर एज अ मॉम प्राउडली खड़ी रहती है और जिस तरह से वो एक एनर्जी पास ऑन करती है, वी ऑल इंजॉय. बट आई एम श्योर एज अ कॉन्टेस्टेंट बींग ऑन दैट स्टेज इज नॉट ईजी. सो एट दिस मोमेंट राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स, में हमेशा से हम कहते आए कि भाई मम्मी में थोड़ी ना कोई विनर हो सकता है. भाई हर माँ एक विनर है अपने आप में, वो अपने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करती है एंड डेफिनेटली शी इज अ विनर, राइट अंशु?
1: बिल्कुल. माँ जो है, जिस दिन आप माँ बन जाते हो, अपने आप में जिंदगी की सबसे बड़ी जीत जो है ना, सबसे बड़ी फतह जो है, आपने वो हासिल कर ली. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड.
0: फाइनली दैट्स व्हाई आई सेड कि बस अब से देखा जाए तो 4 दिन बाद,
1: 4 दिन ही रहेगा.
0: भाई हमारे लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन उनके लिए जो प्रिपेयर कर रही है उनके लिए आई एम श्योर इट्स नॉट सो इजी.
1: जिस तरह के मैसेजेस ग्रुप में आ रहे हैं, जितनी प्रिपरेशन जिस लेवल पे हो रही है, ये तो समझ में आ रहा है दैट सर्टेनली दिस इज द 5th edition. दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवर एडिशन ऑफ
0: एब्सोल्युटली 5th है भाई, स्पेशल तो होना ही है. और आपको अगर जुड़ना है देखने के लिए, इन द सेंस भाई सोशल मीडिया पर देख सकते हैं आप, तो बस मिर्ची वन कतर पेज पर जाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टोरीज जो है कल से शुरू हो जाएगी हमारी बिहाइंड द सीन्स की भी.
1: बिहाइंड द सीन्स, एब्सोल्युटली. ऑलराइट,
0: विद दिस अंशु इज हियर, मैं लेती हूँ अलविदा. टाटा बाय बाय, सायोनारा, और अपना ख्याल रखिएगा. माइक सिग्नल तक आप फ्री लेती है अलविदा और मिर्ची इज हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अरे यार, मैं तो आज मेरा आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ, कॉलेज में कैसे जाऊँ?
1: अरे गोचू, आईडी कार्ड ही भूला है ना, अंदर जाने का रास्ता तो पता ही होगा ना, तो चला जाना।
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: गाने जो होते हैं ना, जो टाइमलेस होते हैं, तो जब जब मैं ये गाना सुनती हूँ कहीं ना कहीं 90s के एरा में तो एक बार जाती हूँ, लेकिन हाँ दिल में कुछ कुछ जो है ना वो जरूर होता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, very good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते मैं आ ही चुकी हूँ. यार जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है ना, ऐसा लगता है कि वक्त जो है कितनी तेजी के साथ रेत की तरह बस फिसलता ही जा रहा है. अगर आज की तारीख को देखने की कोशिश करें तो टुडे इज 15th of June, मतलब जून के महीने का आधा पड़ाव जो है वो हमने एक बार पार कर ही लिया. कुछ दिन पहले की बात है जब हम जोर शोर से नए साल का जश्न मना रहे थे, उसके बाद देखें कितने सारे इवेंट्स हमारी जिंदगी में हुए, कितने सारे दौर हमने पार किए. एंड आगे उम्मीद है कि जो भी हो यार सब कुछ अच्छा हो. सच कह रही हो यार, दिल में ना आज बस एक ही ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि अब जो आने वाला सवेरा है, अब जो आने वाले दिन है, उसमें सब कुछ अच्छा होगा. एंड बहुत सब कुछ अच्छा होगा. हम सब ने मिलकर काफ़ी सारी बातों को पीछे छोड़ा है, हम सब ने मिलकर काफ़ी सारी मुश्किलों को हल किया है. एंड सच कहूँगी कतर की लीडरशिप एंड साथ ही मिनिस्ट्रीज एंड अथॉरिटीज़ का दिल से हम जितना थैंक यू कहना यार वो कम है, क्योंकि उनके चलते हमारी ज़िंदगी जो है हर दौर में, हर वक्त में, हर हाल में है काफ़ी आसान रही है. वाल इसी थॉट के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ इतना बता दूँ, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:12.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Awadan Jubin Autial ki khoobsurat si awaaz se ne agla gaana aap tak pahunchati hu. And agar aap is waqt mere saath connected hain, mujhe sun rahe hain, to zara ye baat jo hai mujhe bata dete. 5001896. I'm eagerly waiting for your good morning messages. Instagram Mirchi 1 Qataria Mirchi Anshu. Meanwhile, stay tuned to Mirchi. Bandi ka naam Anshu. Enjoy.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virtua la burka. Milchi burka.
2: हेलो
3: हेलो नवनीत
2: yeah.
3: नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
2: हाय नवेद,
3: क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया है।
3: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
2: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
3: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
2: हाँ?
3: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
2: या, मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
3: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
2: मिस्टर दिलीप।
3: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
2: मैं क्या कुछ गलत
3: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूं यार?
2: अब ऐसी बात क्या
3: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
2: अब मैं क्या
3: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
2: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
3: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
2: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
3: अरे तो
2: तरफ से मैं माफी मांग,
3: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
2: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
3: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
2: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
3: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
2: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
3: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
2: नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
3: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: भाई चुपके से क्यों? फिर दिल खोल के आपकी बात जो है हम सुनी लेते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए लौट ही चुकी हूँ. एंड अगर आपको सबसे एक्साइटिंग बात बताने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा इवेंट जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसकी बातें पिछले न जाने कितने महीनों से चल रही हैं, फाइनली वो जो है मुकम्मल होने वाला है, यानी कि अपने फाइनल मुकाम पर पहुँचने वाला है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5. Well, absolutely, you heard that right. It is going to be 20th of this month, wherein we are going to be witnessing the grand finale of the 5th edition of Mirchi Mommy Awards. वैसे सच कहें तो कोई माँ जो है ये किसी कॉम्पिटिशन के हकदार नहीं होती यार. माँ जो है अपने आप में जिंदगी का एक वो पहलू है जो शायद कंप्लीट किसे कहते हैं उस शब्द को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती हैं, बयां करती हैं. लेकिन बस यार रिचुअल है, एक ना एक विनर तो सेलेक्ट करना है. पूरा तामझाम होगा, वो स्पॉटलाइट होगी, वो रैंप वॉक होगा, वो स्टेज होगा, वो हमारे स्टीम जजेस होंगे, ढेर सारी ऑडियंस होंगी, वो सारा क्राउड होगा. एंड उसके बाद जो मॉमीज तीन राउंड से गुजरते हुए अपने टैलेंट को दिखाएंगे, जजेस के क्वेश्चन आंसर्स का सवाल देंगी, अपने बच्चों के साथ उस मंच में पूरी तरह से तहलका मचाएंगी, तो जरा सोचें वो दिन होगा तो कितना खूबसूरत होगा. एक बार फिर से पूरे दिल से बिग थैंक यू टू ऑल अवर स्पॉन्सर्स, पार्टिसिपेंट्स एंड एवरी सिंगल पर्सन हु केम फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिनोमिनल इवेंट. एंड डेफिनेटली हमारे कुछ लकी लिसनर्स को ये मौका दूंगी मैं कि वो आए और हमारे शो को जरूर अटेंड करें, विटनेस करें, इस एंटरटेनिंग इवनिंग का हिस्सा बने. एंड अगर आपको लगता है कि आप उनमें से एक लक्की हो सकते हो तो बस मुझे फटाफट से गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो. लेट मी टेल यू, आई कैन नॉट इनवाइट एवरीवन बिकॉज द एंट्री इज लिमिटेड, बट श्योरली विल ट्राई एंड सी कि अपने रेगुलर लिसनर्स को हम जरूर मौका दें कि वो आए, इस इवेंट को एंजॉय करें और हमसे मिल पाए. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस. 5000 1896 इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Richie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बुलजुबिन होटल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। बस जब जब आपका मिस जाता है तो लुट जो है ना हम जा ही जाते हैं, क्या ही बोले।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ एंड साथ ही दिन के एक ऐसे सेगमेंट को भी आपके बीच लेकर आई हूँ जो मुझे मौका देता है कि मैं कुछ देर के लिए चुप रहूँ और किसी और की बात भी जरा मैं सुन ही लूँ। कहने का मतलब सवाल जवाब का सिलसिला। अरे नाना, उस तरह के सवाल जवाब मैं नहीं करती जिस तरह की आपके घर पे आपके साथ किए जाते हैं। अरे मैं तो आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज को फिर से ताजा करने की कोशिश करती हूँ। कहने का मतलब बस इतना ही है कि कोई तो आइकॉनिक सी फिल्म है जिसका कोई कॉन्वर्सेशन इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूंगी। एंड अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से बॉलीवुड लवर हैं सो आपको क्विकली आइडेंटिफाई करना है, फटाफट से मुझे ये बताना है कि ये कॉन्वर्सेशन अगर आपने सुनी तो किस फिल्म में सुनी एंड किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड है। करेक्ट आंसर कहां देना है, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हिच इज 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, बट फॉर नाउ हियर वी गो with this super funny, super hilarious and iconic conversation.
2: Morning, Mrs. Raisha.
3: Morning, Sprightly. आगे कमी नहीं बच्ची छोड़ने।
2: Such a lovely day.
3: हाँ, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा, काय का lovely day.
2: Now, I'm running late for work. I was wondering if you could take Annette to school for me.
3: झूठी, झूठी, आजा.
2: Thank you.
3: You.
4: कौन है अंजलि?
3: आपकी होने वाली बहू।
4: ओह रियली?
3: आज मैं तुझे कॉर्नफ्लेक्स खिलाती हूँ।
5: गुड मॉर्निंग एनेट।
6: मॉर्निंग।
0: Alright, तो अगर आपने ये सुना तो किस फिल्म में सुना एंड किस एक्टर के मुंह से सुना? 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल की आवाज में मैं आपको अगला गाना सुनाई दूं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
2: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क ऑब्वियसली. द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू Impress the women.
1: Shahid, what a lovely dive in nostalgia. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.

0: श्रुति रानी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई और खास बात है वो सुनाने की कोशिश कर लूँ। हेलो, वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ स्पाइस का तड़का जो है ना वो जरूर होते रहना चाहिए। इसीलिए ऐसे दो लोगों को, ऐसे दो किरदारों को आपके बीच में लेकर आई जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किस तरह से किया जाता है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब से कुछ देर पहले आपके बीच पेश की मैंने एक आइकॉनिक सी कॉन्वर्सेशन, जिसे सुनकर आइडेंटिफाई कर आपको बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। नाउ फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, जल्दी से मैं ये कॉन्वर्सेशन फिर से सुना दूं। अगर आपको लगे कि अभी भी आपने इस कॉन्वर्सेशन को पहचान लिया है तो फटाफट से करेक्ट आंसर मुझे भेजना, लेकिन कहां, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896, वी विल गेट कनेक्टेड देयर। सो हियर वी गो।
1: आगे कमीनी बच्ची छोड़ने,
2: सच अ लवली डे।
1: हां, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा, काय का लवली डे।
2: नाउ आई एम रनिंग लेट फॉर वर्क, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड टेक एनेट टू स्कूल फॉर मी।
1: झूठी झूठी, आजा।
3: कौन है अंजलि?
4: आपकी होने वाली बहू।
3: ओह रियली?
4: आज मैं तुझे कॉर्नफ्लेक्स खिलाती हूँ।
5: गुड मॉर्निंग एनेट।
6: मॉर्निंग।
0: तो आप सबने सुना एंड साथ में बड़ी अच्छी तरह से कोशिश की इस फिल्म का नाम बताने की, लेकिन सबसे खास बात यह है अगर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भेजते तो मुझे बहुत खुशी होती। बहुत सारे रिप्लाईज आए, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब जो है आज लिख कर भेजा है, लेकिन जितने भी लोगों ने भेजा है इट इज पूरी तरह से करेक्ट। अगर इस फिल्म की हम बात करें तो एक ऐसी आइकॉनिक फिल्म जिसने हमारी जिंदगी में ढेर सारे इमोशंस जो है एक साथ लेकर आए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कभी खुशी कभी गम। यार देखो, बात इतनी है ना कि कई फिल्में जो हैं ये सिर्फ देखी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है, एंड कभी खुशी कभी गम जो है उनमें से एक ज़रूर है। एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि फैमिली में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन दिल के जो रिश्ते हैं ना वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। ऑनेस्टली अगर राहुल एंड अंजलि की नोकझोंक की बात करें, पू के उस आइकॉनिक कैरेक्टर की बात करें, यशवर्धन रायचंद के उस लार्जर देन लाइफ पर्सोना की बात करें, भाई हर एक कैरेक्टर जो है ना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। एंड देखो, जब आप ऑन स्क्रीन शाहरुख खान एंड साथ ही अमिताभ बच्चन को एक साथ देख लेना, भाई साहब अपने आप में एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा तालमेल है जो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। दो जनरेशन के ऐसे धुरंधर जो एक साथ हमें नजर आए, मजा आ गया यार। बढ़िया जी, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया करण जौहर ने, एंड इसके साथ ही लिखा भी उन्होंने, डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया। मतलब ऐसी फिल्में जो हैं वो करण जौहर ही बना सकते हैं। चलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगी कि ऋतिक रोशन के किरदार की हम बात करें, काजोल की बात करें, पू की बात करें, या तो फिर मैं अंजलि की बात करूं, राहुल की बात करूं, भाई अमिताभ बच्चन जया बच्चन की बात करूं, आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन कैरेक्टर, सबसे अपीलिंग कैरेक्टर इस फिल्म का कौन सा था, मुझे करेक्ट आंसर जो है वो जरूर बताना। एंड जितने लोगों ने भी रिप्लाई किया, मधुलिका, मिराज, शैली, एंड इसके साथ ही अहमद, यू नो यूसुफ, थैंक यू सो मच एवरीवन, द लिस्ट गोज ऑन एंड गॉन एंड इट रियली मैटर्स अ लॉट। आपका जवाब आता है ना, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अलका याग्निक की आवाज़, उदित नारायण का साथ, एंड इस फिल्म से ये आइकॉनिक सा गाना आपको सुनाते हैं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Well, Navtej Singh Rahil ki awaaz and what a power pack track it is from the film Dhurandhar. Bhai sahab, ye gazab ka gaana to us waqt maine aapko suna diya, lekin ye behad kaam ki baat hai jo aapko jaani bahut zaruri hai.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसे इवेंट की हम बात कर लें जिसका है हम सभी को बेसब्री से इंतजार. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हम्बा एग्जीबिशन, एब्सोल्युटली द मैंगो फेस्टिवल व्हिच इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज एट सुक वाकिफ इन एसोसिएशन विद एम्बेसी ऑफ इंडिया कतर. देखिए, सबसे खास बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखने की कोशिश करें, मैंगो की वेराइटीज की अगर हम बात करें, तो अगर आपको नहीं पता तो आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि भारत में हर साल 1000 से ज्यादा वेराइटीज होती है मैंगो की प्रोड्यूस. लेकिन अगर कंजम्पशन की बात करें तो जितना नेट प्रोड्यूस होता है उसमें से भारत जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1% ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बाकी पूरे के पूरे आम जो है वो भारत में ही खपे जाते हैं. इनफैक्ट अगर मैंगोज की वैल्यू को आप देखने की कोशिश करें तो कुछ आम तो ऐसे हैं जो अगर आप सिर्फ 1 dozen की बात करें तो तकरीबन 20,000 रुपए किलो के भाव में भारत में बिके जाते हैं. लोग जो है बड़े चाव से उन्हें खरीदते हैं एंड पूरी तरह से उन्हें एंजॉय भी करते हैं. बढ़िया जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे जो लोग हैं जो इतने महंगे महंगे आम खरीदते हैं, अगर आपको लगता है आपको मेहमान नवाजी का बड़ा शौक है तो हमें गेस्ट बन के आने का बड़ा शौक है, कभी हमें भी बुला लो. कुछ नहीं, बस उस आम का ही अच्छा डिश बना के खिला दो, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो एक पेटी आम की दे दो. यू नो, जस्ट सेइंग, आइडियाज जो है लोगों के दिमाग में देते रहना चाहिए. अब वो ले ना ले तो उन पर डिपेंड करता है, अपना काम है बताना, वो हमने बता दिया. चलिए जी, लेकिन अगर आम की कुछ वैरायटी इस वक्त आपको इंडियन मैंगोज की कतर में देखना है तो याद रखें, इट इज गोइंग टू बी 18th of June जब हम्बा एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया जाएगा. ढेर सारे भारतीय आम जो है आपको सुक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में दिखेंगे.

एंड जो टेंट है फुल्ली एयर कंडीशन है, जरूर जाए भैया। मैं तो वो आम की बनी हुई चाट खाने वहां पे जाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। कच्चे आम, पके आम, मीठे आम, आम की मिठाई, सब कुछ वहां पे मिलती है। एंड साथ ही जो इतने सारे लोग होते हैं आम खाने के बाद बड़े खास बन जाते हैं, उनसे भी हम मुलाकात जरा कर ही लेते हैं। तो अगर आप आने वाले हैं तो मुझे बताना जरूर। 27 जून तक ये चलने वाला है, एक ना एक दिन मैं आपको जरूर मिलूंगी। लेकिन अभी फिलहाल बंजारी की आवाज में मेरा सबसे फेवरेट जो लेटेस्ट ट्रैक है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
1: या
2: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
1: हाँ, बोलिए।
2: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
1: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
2: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
1: Oh my God.
2: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
1: नहीं मैम, प्रॉब्लम
2: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
1: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजूं?
2: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
1: सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
2: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
1: Hello.
2: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, one second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना, वही वही कुची पुची कुची पुची. ओके स्वीटहार्ट बाय. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे नहीं होते हमारे,
2: चकोर दे दीजिए. गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए.
1: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
2: लंबे वाले
1: नहीं है वो.
2: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं.
1: क्या खाते हैं
2: मैम? मुर्गा
1: मैम, वो भी नहीं है.
2: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
1: मैम ये हमें नहीं
2: पता. हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
1: हाँ जी मैम बताइए.
3: रेडियो मिर्ची. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने.
1: आपकी आवाज में काफी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
5: Love is my biggest fear because for me love is death.
4: Witness Karishma Kapoor in her most ruthless avatar yet.
6: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी.
4: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: ऑलराइट, इस गाने के बाद कुछ खामोशी के बाद कोई तो खास बात है जो इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के बाद स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड साथ ही जब जिंदगी में खामोशी कुछ इस तरह की हो जाए, खासकर उस इंसान की तरफ से या उस चैनल की तरफ से जो अक्सर आपसे ढेर सारी बातें किया करते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है तो कैसा होता है। बस मैं आपको यही बताना चाहती थी यार, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ना हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नॉन स्टॉप बातें करते हैं या हमें छेड़ते रहते हैं, कभी हमसे कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो शायद हमें ना पसंद भी हो, कम पसंद भी हो, और हमें ना अक्सर उनसे शिकायत होती है कि यार तुम ना हमेशा ये करते हो, तुम ना हमेशा ये बोलते हो। लेकिन कुछ अगर ऐसा लाइफ में हो और कुछ पल के लिए भी अगर वो शांत हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपको इनकी कमी खलने लगती है। मतलब जाने अनजाने किसी के बात करने की आदत हमें किस तरह से हो जाती है एंड ये बात जो है हमें पता ही नहीं चलती। एंड सच कहूँ, जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है ना, ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आपकी आदत बन चुका है एंड साथ ही उनकी गैर मौजूदगी आपको कहीं ना कहीं खलती है, तो आपसे रईस और कोई नहीं है यार। क्योंकि ना हमें ज़िंदगी में जीने के लिए भीड़ नहीं चाहिए, अभी झुंड नहीं चाहिए, एक शख्स हो गुल मिलाकर वो चार लोगों जिन्हें आप अपनी उंगलियों में गिन सकें। लेकिन हर मौके पे अगर वो आपके साथ है ना, तो ज़िंदगी जो है मुकम्मल है, ज़रूर मुकम्मल है। बढ़िया जी। एंड मिर्ची जो है ना, हमारी फैमिली के हर एक सदस्य को ऐसा मौका देती है, क्योंकि हम तो आपको अपनी लाइफ का वही हिस्सा मानते हैं कि आप आएँ हमसे मिलें, ऐसी ढेर सारी बातें जो है ना वो करते रहें। हैविंग सेड दैट, मिर्ची के कैसे इवेंट की बात करें जिसकी बातें काफ़ी दिनों से हो रही है, वो अपने फाइनल मुकाम में पहुँचने की पूरी तैयारी कर चुका है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड्स का ग्रैंड फिनाले सीजन 5। तारीख में तारीख निकल चुकी है, इट इज गोइंग टू बी 20th ऑफ दिस मंथ जब हम ग्रैंड फिनाले लाइव विटनेस करेंगे। इससे जुड़ी हुई सारी बातों के लिए आपको एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है मिर्ची कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। सोशल मीडिया में कनेक्ट करते रहें मिर्ची 1 कतर। मीनवाइल मोहित चौहान की आवाज एंड ये अगला पावर पैक गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: रहमान की आवाज चिन्मई का साथ, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म गुरु। ये तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन गुरु कुछ और भी खास बातें वो आपसे हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। अगर आपके दिल में भी बस यही सवाल है तो इतना बता दूं, समर्स में बहुत कुछ एक्साइटिंग आपके लिए लाइनअप हो ही चुका है। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। भाई गर्मी के दिनों में हमारे दिमाग में और दिल में एक ही अभियान रहता है कि कुछ नहीं करना है, घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस एंड ऑफिस से वापस गाड़ी और फिर घर, नहीं तो फिर अगर कहीं बाहर निकलना है तो वो भी इंडोर एक्टिविटीज को ही तलाशना है। लेकिन इस वक्त ओल्ड दोहा पोर्ट ने आप सबके लिए कुछ तो एक्साइटिंग है जो लॉन्च किया है। इट इज किक स्टार्टिंग today and it is going to run until 15th of October. बहुत सारी ऐसी खास exciting activities है जो बिल्कुल आप ओल्ड दोहा पोर्ट में शाम के वक्त जाकर enjoy कर सकते हैं। फिर चाहे मैं complimentary golf carts की बात करूं, बहुत सारी summer activities and fitness activities की बात करूं, विभिन्न specific activities भी यहाँ पे host की जाएंगी जो कि basically indoors होंगी। Waterfront adventures को अगर आप देखें, चाहे fishing की बात करें, surfing की बात करें, water skiing की बात करें, ये ढेर सारी चीजें जो हैं दोपहर 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इस वक्त आप ओल्ड दोहा पोर्ट में जरूर एंजॉय कर पाएंगे। देखिए इस जगह के नाम में ओल्ड है, लेकिन एक्सपीरियंसेस जो है ना ये आए दिन हमें बिल्कुल न्यू देता रहता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, समर्स को और एक्साइटिंग एंड खास बनाने के लिए मैं हूं जो सारे डिटेल्स देती हूं। बाकी ओल्ड दोहा पोर्ट आपको बुला ही रहा है, एंड दोनों का तालमेल में जब आप आ जाए ना तो कमाल कॉम्बिनेशन जो है वो बन ही जाता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलिए जी चलते हैं, जाके एंजॉय करके आते हैं। आइसक्रीम से लेकर कैफे से लेकर ढेर सारी चीजें जो है ना ईटरीज की भरमार है वो भी देखे आएंगे। अरिजीत सिंह की आवाज़ शामाली खुलगड़े का साथ, एंड ये बीच बीच में गाने जो मैं सुनाती हूँ वो कंटिन्यू रखें सिलसिला। एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
2: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
1: 2+2=4, बादशाह गिव अस मोर, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या खूबसूरत सा गाना है। मैंने एब्सोल्यूट लव दिस विद दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म लाल सिंह चड्ढा। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त आपकी सेहत को बनाने की जरा सी कोशिश जो है वो हम कर लें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aryanshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। लेकिन सुने, अगर स्पाइस की बात है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आइस कोल्ड की बात है तो यहाँ पे ज़रा संभल के सतर्क रहकर चलना होगा। यार, आपने सुना होगा कि गर्मियों में पानी जो है वो ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन आज का हेल्थ टिप जो है ये ज़रा हटके। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या घर या ऑफिस से सीधा अंदर आते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि तेज़ गर्मी के बाद इंस्टेंटली आपको आइस कोल्ड वाटर की तलब हो रही है, तो ज़रा ना हमको संभलने की ज़रूरत है। वेल, एक्सट्रीम हीट के बाद बहुत ठंडा पानी पीने से बॉडी को टेम्परेचर एडजस्ट करने में एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है। एंड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पहले 5 से 10 मिनट बॉडी को नॉर्मल होने दें, एंड उसके बाद ही स्लाइटली कूल या नॉर्मल बॉडी अपनी वाटर जो है अपनी बॉडी में डालने की कोशिश करें। अक्सर क्या होता है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि लगता है कि भाई प्यास लग रही है, जो है दे दो, बस ठंडा दे दो। नहीं यार, कभी भी एक्सट्रीम गर्म या एक्सट्रीम ठंडा का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आग और बर्फ का कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। एंड यार, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है, सिर्फ डिहाइड्रेशन की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ बॉडी जो है सोडियम एंड मिनरल्स को भी लूज करती है। इसलिए नॉर्मल बॉडी कभी कभी आपको हाइड्रेट करने का काम नहीं कर पाती। इसलिए ज़रूरी है कि चाहे कोकोनट वाटर की बात करें या छाछ की बात करें या इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स की बात करें, अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं, कि एथलीट नहीं हैं, तो भी गर्मी के दिनों में खासकर इन्हें अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। एंड बाकी आपके दिमाग कलेजे ठंडक के लिए ही काम करना है। अंशु को सुनते रहना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: बेला की अली की खूबसूरत सी आवाज़ रम्या का साथ और व्हाट अ ब्यूटीफुल लवली ट्रैक इट इज़ यार, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया लेकिन ये आंखें अब मैं इनका क्या करूं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार हृदय रोशन की आंखें इस गाने में जितनी प्यारी लगी है ना, इस फिल्म में जितनी प्यारी लगी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कहो ना प्यारे, उतनी खूबसूरत ही आंखें कहीं ना कहीं लकी अली की है। यार मुझे ना एक पल के लिए ऐसा लगता था कि लकी अली और हृदय रोशन जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है, स्पेसिफिकली इनकी आंखों को देखकर। भाई वही कशिश वही नशा, क्या खूबसूरत सी आंखें हैं। वैसे आंखों का तो नहीं पता लेकिन इंसान जो है ना इस वक्त लाल बम होने की पूरी तैयारी कर चुका है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajan Show with you. जिस तरह की पूरी you know, कहने चाहिए सिनेरियो हमारे बीच उस वक्त क्रिएट किया गया है, गर्मी ने जो कहर हमारी जिंदगी में डाला है, इसके बाद इंसान जो है गुस्से से एंड साथ ही नेचुरली लाल बम ना हो तो फिर क्या ही हो। इमेजिन करें यार, अब तक ये आंकड़ा जो है ना हम सुनते आए हैं, जब जब हम सुना करते थे तो लगता था भाई यहाँ इतनी गर्मी पड़ा करती है, एंड जब फाइनली इसे महसूस करें तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है। इमेजिन हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपकी उम्र हो ना हो लेकिन हाँ टेम्परेचर जो है 50 की दहलीज को पूरी तरह से क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है। कल पहली बार जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी एंड टेम्परेचर मुझे 51 डिस्प्ले हुआ, शायद बाहर का ना हो लेकिन कार जो है ऑर्गेनिकली इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसके बाद रियलाइज हुआ भाई भीषण गर्मी जो है हमारी जिंदगी में दस्तक दे चुकी है। एंड इसके साथ ही जो नौतपा का फेज हम भारत में कहा करते हैं, कतर में अभी यही फेज चल रहा है जब 13 डेज सबसे गर्म हम लाइव विटनेस कर रहे हैं। 7th ऑफ जून को ये शुरू हुआ, इमेजिन कर लीजिए कि आगे कितने दिन हैं जो आपको इस गर्मी को और बर्दाश्त करना है। अपने आप को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी से एकदम एक्सट्रीम ठंड में एंटर ना हो एंड वाइस वर्सा भी ना हो। बाकी कलेजन दिमाग के ठंडक के लिए एक ही काम करते रहना, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट, एंजॉय। वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वेदर चेक, ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Is that Sanjeev?
3: Yeah, I'm speaking.
4: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
3: Okay.
4: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
3: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
4: ओके.
3: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
4: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
3: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
5: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: सॉरी सर.
4: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
3: कस्टमर्स आए हैं, जब मैंने आपको बताया ना, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
5: बकवास बनकर कूलली तू करता था, कूलली दांत अंदर कर.
3: हम करते थे सेटिस्फाइड
5: कर. बकवास बनकर
3: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
4: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
3: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
5: शराब
3: उन्हें.
5: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
3: अभी तक
5: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल ने पकड़ा कभी हाथ में?
3: बोल के
5: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
3: खुद को देखा आपने कभी?
4: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. okay. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: रोमी एंड तनिष्क बागची की खूबसूरत सी आवाज एंड लाल पीली आंखियां। हाँ जी, इस वक्त जो है ना, ये सारी की सारी आंखियां हर किसी को देखने को मिल रही।
1: मिर्ची अंशु
0: मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन आज जो है हमारी लाइफ में मिठास एंड स्पाइस दोनों लेकर आए हैं, जरा उनकी बात हो जाए। वेल, अगर आज के पैसे को देखने की कोशिश करें, भाई साहब सॉलिड बोलबाला है, कोई तो कमाल बोलबाला है। इतना ही कहना चाहूंगी, अगर अकाउंट में पैसे हैं तो फटाफट से उन्हें ट्रांसफर करने की तैयारी कर दें। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.94, इसके साथ ही बांग्लादेशी टका 33.76, पाकिस्तानी रुपीज 76.74, नेपाली रुपीज 41.73 एंड इसके साथ ही श्रीलंकन रुपीज 92.09। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑड, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mischievous team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म धुरंधर। अगर गहरे होने की बात करूं तो ये जो रंग है ये काफी गहराई होते जा रहे हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. अगर सबसे गहरे और खूबसूरत रंग की बात करूं तो भाई वो है एक माँ और उसके बच्चे का रंग। जरा सोचे यार, इससे प्यारा रंग दुनिया में और इससे गहरा रंग दुनिया में कोई और हो सकता है क्या? एंड एक बार फिर से इस रंग को सेलिब्रेट करने की बारी जो है वो आ चुकी है विथ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। इट इज गोइंग टू बी 20th of June when we are going to be witnessing the grand finale of this magnanimous event and believe me, there could be no other experience better than witnessing a bond between a mom and a child. And इस बार का एडिशन जो है ये 5th edition है तो आप समझ सकते हैं कि कितने धमाकेदार तरह से इसे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। हमारे जजेस जो हैं पूरी तरह से रेडी हैं, कंटेस्टेंट्स की प्रेपरेशंस जो हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं, मिर्ची की पूरी टीम, फैंस एंड फॉलोअर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं कि भाई इस बार जो कमाल होगा वो कितने गजब तरह से होगा, क्या धमाल होगा। एंड साथ ही मिर्ची मॉमी का ये जो क्राउन है ये किस मॉमी के सर पे सजेगा जो सुपर मॉमी बस बनने ही वाली है। वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। कौन है हमारे फाइनलिस्ट, क्या है इनकी दास्तान, ये सब की सब जानने के लिए, समझने के लिए बस मिर्ची वन कतर को इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहें। सारे के सारे अपडेट्स जो हैं वहां मिलते रहेंगे। एंड मुझसे कनेक्ट करना है तो मैं मिलती हूं मिर्ची अंशु के नाम से। भाई सारे के सारे जब नच देने हैं तो ये गाना हो जाए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: एक बात बताएं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी को देखे बगैर बस उनकी खुशबू से ही आपने उन्हें पहचान लिया हो?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। यार सच कहूँ, बचपन के दिनों में ना कई बार मम्मी को देखे बगैर ही बस जब वो मेरे सामने से गुजरती थी ना, तो मैं पहचान जाती थी कि ये मम्मी है। ना यार, उनकी खुशबू से और किसी बात से नहीं। कहते हैं ना, माँ की खुशबू इतनी अलग और इतनी कमाल होती है कि बच्चा जो है उसे डेफिनेटली पहचान ही जाता है। और इसी खुशबू को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम इस वक्त हमारे लिए अगर कोई कर रहे हैं तो वो है हमारे फ्रेग्रेंस पार्टनर ऑफ मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फरीदी परफ्यूम्स गैलरी। सबसे पहले आपको दिल से थैंक यू कि आप इस इवेंट का हिस्सा बने एंड साथ ही हमारी जिंदगी में इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस को स्प्रेड करने की आपने कोशिश की। यार अगर आपको प्रीमियम फ्रेंच परफ्यूम चाहिए या अरबिक परफ्यूम चाहिए, किसी भी ओकेजन के लिए चाहिए, तो अगर आपको सीधा कहीं पहुंचना है तो वह है फरीदी परफ्यूम गैलरी एंड सीधा इनके अलसद ब्रांच में जाएं जहां परफ्यूम्स की ढेर सारी वैरायटी एंड रेंज जो है आपको मिल ही जाएगी। एंड बॉस अगर जा रहे हो तो मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं, मैं बताती हूँ। बिल्कुल, आप मुझे गिफ्ट कर सकते हो। आखिरकार फरीदी परफ्यूम्स गैलरी के बारे में मैंने तो आपको बताया। टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अच्छा

पावर्ड बाय iPay, बेस्ट रेट नो स्ट्रेस iPay वॉलेट का भरोसा डाउनलोड कीजिए आज ही iPay, द बेस्ट रेमिटेंस रेट इन कतर।

0: कल रात ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो आई फेल्ट कि यार सारा कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बिना बात की नींद कैसे उड़ गई। बस फिर क्या, गूगल बाबा से पूछ लिया। और आप तो जानते हो, एक बार गूगल बाबा से पूछा मतलब ठाकुर तो गयो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. बस क्या यार, Google पर जो लिखा था ना वो पढ़कर तो मेरी नींद और ही उड़ गई। फिर मैंने वही नुस्खा अपनाया जिससे बचपन में मुझे अच्छी नींद आया करती थी। जरा सा नारियल तेल लगाया, चंपी की, और फिर जो बढ़िया नींद आई है, आ हा हा हा हा हा। अगर ये सवाल मैं आपसे भी करूं कि आप अपने बचपन के नींद लाने का कौन सा नुस्खा फॉलो करते हो, तो डीएम करो ना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Sunil ji.
2: Haan ji.
3: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर. कंग्रेचुलेशन, आप लकी विनर हैं.
2: किस चीज के जी सर?
3: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री. मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के.
2: वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया.
3: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में.
2: ठीक है. अच्छा एक बात तो बताइए सर जी.
3: हाँ जी.
2: इसके क्या पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
3: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं.
2: कंडीशन वगैरह?
3: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है. पुराने ग्राहक हैं आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
2: तो ठीक है, पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपना समझ के कहते हैं ना, अपने कोई ज्यादा.
3: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
2: क्या?
3: पुराना लाइए, नया ले जाइए.
2: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
3: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है. और वो भी आप ही का निकला है.
2: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं?
3: सर पुराना जो आपने
2: तो जल के वो खत्म कर दिया हो
3: तो सर जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको.
2: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
3: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है. वाह वाह जी वाह वाह, थैंक यू. अब मैं आपसे कह रहा हूँ
2: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है.
3: अरे
2: क्या हो रहा है?
3: अरे तो ये क्या
2: पुराना कहाँ से लाऊं?
3: पुराना आपको लाना पड़ेगा. ये भी मैं पुराना भी वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए. हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना. यार कमाल कर रहे हैं आप.
2: पेट्रोल फालतू का. अच्छा. पुराना लाओ, नया ले जाओ, ये ले जाओ.
4: अरे मेरी बात सर जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा. हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है. सर मजा आ गया आपसे बात करके. मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं.
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम बॉलीवुड के भक्त लोग अगर MBBS की डिग्री देखेंगे ना तो बोलेंगे हाँ नाइस नाइस, लेकिन अगर मुन्ना भाई MBBS की CD देखेंगे ना तो बोलेंगे अबे ये कहाँ से मिली?
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और मुन्ना भाई वो फिल्म है जिसने जाने कितनों के करियर में फिर से चिंगारी जला दी. स्टार्टिंग विद संजू बाबा, जो इस फिल्म तक गैंगस्टर टाइप रोल्स ही प्ले किया करते थे. उनकी एक इमेज बन गई थी यार, लेकिन इस फिल्म के साथ उनकी इमेज की काया पलट गई. एंड देन कमिंग टू अरशद वारसी, जिनको MBBS से पहले 3 सालों तक कोई फिल्म नहीं मिली थी, और फिर इस मूवी के बाद कॉमिक रोल्स की ऐसी लाइन लगी उनकी लाइफ में कि पूछो मत. और बोमन ईरानी, इस फिल्म के बाद उनका करियर भी गॉट नोटिस्ड. एंड इनफैक्ट राजकुमार हिरानी की भी ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर. और किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म में विद्धू विनोद चोपड़ा ने पहले संजय दत्त को जहीर का रोल ऑफर किया था, द सेम रोल जो फिर जिमी शेरगिल ने प्ले किया. लेकिन कैसे चीजें बदली, वही तो बात आपको आगे बताऊंगी. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: संजय दत्त को मुन्ना भाई MBBS के लिए जहीर का रोल ऑफर किया गया था और मुन्ना भाई का रोल ऑफर किया गया था शाहरुख खान को।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन किस्मत का खेल कुछ यूं था कि शाहरुख खान की नेक की सर्जरी के चलते ही हैड टू से अ नो टू द फिल्म, एंड देन विद्यू विनोद चोपड़ा ने संजू बाबा को लीड रोल के लिए मूवी ऑफर की। हालांकि संजय दत्त वाज एप्रिहेंसिव टू डू द मूवी सिंस उन्हें उस टाइम पर डॉन और गैंगस्टर के रोल्स ही ऑफर हो रहे थे, बट सुनील दत्त साहब आस्क्ड हिम टू डू द फिल्म एंड ही सेड अ यस। और किस्मत का खेल देखो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम संजय दत्त वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भाई। इससे पहले भी उन्होंने क्रोध, हम किसी से कम नहीं इन सारी मूवीज में मुन्ना भाई नाम के ही किरदार निभाए थे। फर्क यहाँ इतना था कि उसी नाम मुन्ना भाई के पीछे MBBS लग गया, तो स्टोरी की काया ही पलट गई यार। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एजुकेशन कैन डू वंडर्स टू आवर लाइव्स। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: Sir, computer में virus घुस गया है. क्या करूँ?
1: Oh my God. आज ही डॉक्टर के पास लेके जा और वैक्सीन दिला.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है संजू बाबा, हाँ संजू बाबा आउट ऑफ ऑल पीपल यूज टू बी सो स्केर्ड ऑफ हिज फादर सुनील दत्त साहब व्हाइल वर्किंग फॉर मुन्ना भाई MBBS.
2: ये नब्बे की गप्पे.
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. वैसे फनी तो लगता है कि इतना ग्रोन अप बंदा इस उम्र में भी अपने फादर से डरता हो, बट क्यूट भी बहुत लगता है यार. एंड वेल, दत्त साहब का डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस वो बात थी जिससे संजय दत्त को घबराहट होती थी और वो अपने फादर के चक्कर में सेट पर टाइम पर पहुंचते थे. ये फिल्म संजय दत्त और सुनील दत्त साहब की साथ में की गई आखिरी फिल्म थी. इनफैक्ट दत्त साहब की ही आखिरी फिल्म थी क्योंकि अगले ही साल ही पास्ट अवे. एंड द फेमस जादू की झप्पी वाला सीन जो दत्त साहब और संजय दत्त के बीच शूट हुआ था ना, वो सिनेरियो तो सिर्फ ऑन कैमरा ही नहीं ऑन सेट्स भी इमोशनल हो गया था. जब दोनों बाप बेटे इस सीन के लिए गले लगे तो इमोशनल इतने हो गए कि डायरेक्टर ने तो कट बोल दिया था, लेकिन ये दोनों तब भी एक दूसरे के गले से लगे रहे और इन दोनों को रियलाइज ही नहीं हुआ कि सीन खत्म हो चुका है. और काफी देर तक दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को झप्पी देते हुए वहीं खड़े रहे. उफ, इस बात ने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया यार. यही तो कमाल है यार 90s के किस्सों में, ये हमें इमोशनल करके ही छोड़ती है. स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Cámbala! Burga, burga. La vida para la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो नवनीत नवनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: यार मैंने तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर? नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे ही मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी है उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या
2: ऐसी ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूँ यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ यानी कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी मांग,
2: माफी मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफी मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना है, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरे तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं?
1: नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो
1: कुकड़ुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुखविंदर सिंह और विशाल ददलानी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कमीने। इट साउंड्स लाइक अ बॉयज पार्टी, फुल ऑन बॉयज नाइट। लेकिन पता है क्या, इस गाने के अंदर ना एक कॉमेडी या फिर यूं कहें कि ट्रेजेडी भी है। हाँ, मतलब एक रात पहले तो बंदे जो है वो गा रहे होते हैं कि आज आजा दिल ने छोड़े, रात की मटकी फोड़े, और अगली सुबह वो लोग ग्लास के अंदर नींबू निचोड़ निचोड़ के पी रहे होते हैं हैंगओवर उतारने के लिए।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And boss, इस गाने के बाद अब मेरे वाले गाने की बारी है। अरे वही गाने जो मैं अन्नू जी की तरह इधर उधर से उठाती हूँ, उनको मिलाती हूँ और उसकी धुन आपको मिला के सुनाती हूँ ताकि आप पहचान पाओ कि ये दो अलग अलग गाने कौन से हैं। तो आज की वो दो धुने जो मैंने आपके लिए चूज करी है वो है कुछ यू। ओके जी, इसी के साथ कार्यक्रम तो बहुत ही सिंपल है। आपने मुझे डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई हिंट दे दूं, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, मैं आपको हिंट दे ही देती हूँ। ये दोनों ही गानों में खान्स हैं, लेकिन दो अलग अलग खान्स। और इन दोनों ही गानों में बंगाली ब्यूटीज हैं, लेकिन दो अलग अलग बंगाली ब्यूटीज। अब 90s में कौन कौन बंगाली ब्यूटीज हुआ करती थी ये कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो फटाक से कैलकुलेट करके जवाब दो। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना

अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विद्या बालन आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
3: ऑफ कोर्स कस्तु मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
2: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब मोहरा बन रही थी तो अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल कहा था विच डिडंट गो वेल विद सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा वो झकास तो नहीं था। वेल ही टॉन्टेड बोथ द एक्टर्स बिकॉज़ ही सेड कि द डायरेक्टर राजीव राय को हुआ क्या है कि वो जैकी श्रॉफ और सनी देओल जैसे एक्टर्स को छोड़कर 50% एक्टर्स को लेकर बना रहे हैं फिल्म। एंड बाय दिस ही मेंट कि सुनील और अक्षय न्यूकमर्स हैं जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, सो व्हाई चूज देम। एंड यस दे वर न्यूकमर्स एंड नॉट नोन फेसेस। और ये बात जब इन तक पहुंची तो सुनील शेट्टी को अनिल कपूर की ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ थिंग फ्रॉम अ वेटरन एक्टर लाइक अनिल कपूर। फनी हाँ, जहां झकास बोलना था वहां बकवास बोल दिया। एनीवेज लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La vizva la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी।
3: मुझे कुछ ऑर्डर करना था, आप लिख लेंगे प्लीज?
2: या
3: और रात के खाने के लिए लिख लीजिए प्लीज।
2: बोलिए।
3: 2.5 किलो अरहर दाल, 3 किलो चना दाल, 3.5 किलो चना कबूली, 4 किलो चना डॉलर प्रीमियम, 1 बेसन। हाँ,
2: एक्चुअली में 2.5 किलो वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता, 2-2 किलो में, 1-1 किलो में पैकिंग होती है, तो 2 kg।
3: अब आपको ये मैं क्या, वो 2.5 किलो ही खाते हैं, मैं क्या करूँ?
2: Oh my God.
3: मेरे हस्बैंड हैं, डाइट उनकी है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
2: नहीं मैम, प्रॉब्लम
3: 4 किलो चना दाल, 4 किलो चना कबूली,
2: चना दाल, चना कबूली। एरोप्लेन भेजू?
3: एरोप्लेन भेजिए, हमें जाना ना हनीमून पे।
2: सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ 5 kg एरोप्लेन राइट मैम, सॉरी।
3: एक सेकेंड, कभी फोन आ रहा है। स्वीट हार्ट आई लव यू, ऑर्डर दे रही हूँ। तुम आओ तो सही ना। No, I will be waiting for you, my sweetheart, my Janu.
2: Hello.
3: One second, मेरे हस्बैंड से बात चल रही है, 1 second. कब आओगे रात में? अच्छा सुनो, मेरे लिए रात में वो लेके आना ना। वही वही कुछी पुछी कुछी पुछी। Okay, sweetheart, bye. हाँ लिखिए, 3 प्लेट गोलगप्पे।
2: गोलगप्पे नहीं होते हमारे,
3: चकोर दे दीजिए। गोलगप्पे नहीं है, चकोर वाले दे दीजिए।
2: है नहीं मैम हमारे यहाँ,
3: लंबे वाले
2: नहीं है वो।
3: अच्छा लास्ट फाइनली, मैं और मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खाते हैं,
2: क्या खाते हैं
3: मैम? मुर्गा
2: मैम, वो भी नहीं है।
3: आपको ये नहीं मालूम दिल्ली में सबसे अच्छा मुर्गा कहाँ बनता है?
2: मैम ये हमें नहीं
3: पता। हमें मालूम है, मैं बताऊँ आपको?
2: हाँ जी मैम बताइए।
4: रेडियो मिर्ची, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं छोटा सा मजाक कर रहा था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया भाई साहब हमने।
2: आपकी आवाज में काफी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: और आम पापड़।
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो। पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे, आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे, एक पैकेट जितना लंबा चल सके यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना, तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक, प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा।

0: Richie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: दोस्ती का कुछ है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में कैसेट की साइड बी का ये दूसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: गाना बिल्कुल सच बोलता है यार कि मुश्किल बड़ा ये प्यार है। सोच रही थी कि उससे भी मुश्किल तो इस गाने को लिखना रहा होगा यार, क्योंकि ये गाना दो दो लफ्जों के मीटर में लिखा गया है। आपने नोटिस किया? नहीं किया तो सुनाती हूँ।

मुश्किल बड़ा ये प्यार है। अब आप बताओ, प्यार मुश्किल हुआ या फिर इस गाने में वो दो लव्स ढूंढना जो मीटर में बैठ भी जाएं एंड दे आल्सो मेक सेंस? बिग डील डूड। एनीवेज, चलो यार, अब ये गाना जब इतना सुनी लिया है तो बाकी का भी सुनी लेते हैं। लेकिन आफ्टर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग फॉर योर 90 की प्लेलिस्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा आप मुझसे मिल सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ अगला गाना आ रहा, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जब भी ताल फिल्म देखती हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के पीछे एक क्यूट लड़का दिखता है, और वो कौन है? शाहिद कपूर. बट शाहिद, इफ आई हैड टू आस्क यू अबाउट योर फिल्म जर्नी एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, कौन सा था वो?
3: मेरा पहला गाना था, इट वॉज इन इश्क विश्क. ऑब्वियसली द फर्स्ट सॉन्ग वॉज दिस सॉन्ग वी डिड इन अ कैंटीन कॉल्ड लव लव लव करो, वेयर ऑल द गाइज आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन.
2: शाहिद, व्हाट अ लवली डाइव इन नॉस्टैल्जिया. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए।
1: अरे तो सिंपल है ना, फटाफट कर जा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Sham Shandar brought to you by Kim's Health Medical Center. Mirchi. Fresh maal.
1: मस्ती मैडनेस और जंगल के एडवेंचर के वाइब्स के साथ सुनो वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक

0: गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शान, प्रिया पाटीदार, विक्रम की आवाज में ये गाना। वैसे तो मैडम ने पूरा ऑर्केस्ट्रा का नाम लेके बता दिया था, लेकिन सुनाया किसने? लेकिन एक कहानी जो हम सुनने वाले हैं वो है ह्यूमिडिटी की जुबानी, क्योंकि धीरे धीरे फीलिंग आ रही है। दोपहर के बाद शाम नहीं, फिर से रात आकर सुबह की नया दोपहर हो जा रही है। शाम के 4:05।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हां जी, तो मस्मोला गौरव आपके साथ है। देवी और सजनों, गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए अपने पानी पीने की होप को बढ़ाते रहिए, जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखिए। एंड कतर के कोने कोने की बात लेकर आ गया मस्मोला गौरव अपने शो शाम शानदार में, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि अशगाल ने एक रोड अकम्प्लिश कर लिया, यानी कि बनकर तैयार हुई है और अपना फेज 7 रोड इंप्रूवमेंट का पूरा किया है अशगाल ने। इसके अलावा कतर कहां पहुंचा है, मोस्ट पीसफुल कंट्री इन मीना रीजन, और कुछ और बड़ी चीजें जो यहां पर होने वाली है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हमें इन्वाइट किया है एक इंपॉर्टेंट काम के लिए। ये सब कुछ यहां आपको पता लगेगा शाम शानदार में। बस अपना वॉल्यूम बढ़ाई लो, मिर्ची लगा लो और अगले 4 घंटे एंटरटेनमेंट के नाम हमारे साथ जोड़ लो। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौरव लेकर आ गया है शाम शानदार। व्याह करवा दो जी, मिक्का शीश कर कह रहे हैं, लग रहा है सलमान भाई के लिए गाना बना है मिर्ची।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. Na vjet bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Is that Sanjeev?
1: Yeah, I'm speaking.
2: Hi Sanjeev, I am Atul calling from...
1: Okay.
2: संजीव आपने 3 राउंड्स क्लियर कर लिए हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए. ये आपका फाइनल राउंड है जिसमें हम कैंडिडेट के पेशेंस चेक करते हैं, उसमें कितने पेशेंस है, कितना इत्मीनान है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस तरह की जॉब है. तो आपको लगता है कि आप में पेशेंस हैं सारे?
1: पेशेंस तो है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया हुआ उसमें भी मेंशन है ये चीज.
2: ओके.
1: कई तरह के कस्टमर्स होते हैं, उनको सेटिस्फाइड करने हमारा काम है.
2: कितने साल जॉब करी है आपने इससे पहले?
1: मैंने 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
3: चुप कर. 2 साल काम किया एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव.
1: सॉरी सर.
2: कैरी ऑन रखिए, आप बताइए मुझे अपने बारे में. ये मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा हूँ. हाँ बताइए. भड़कता हुआ कस्टमर आता है, कॉल करता है, तो उसको किस तरह हैंडल करते थे?
1: कस्टमर्स आए, जब मैंने आपको बताया ना, ये 2 साल का एक्सपीरियंस है. इस टाइप के कई कस्टमर्स आते थे जिनको हम बहुत ही कूलली, बहुत पेशेंट के साथ उनको सेटिस्फाइड.
3: बकवास बंद कर, बकवास बंद कर. कूलली तू करता था? कूलली दांत अंदर कर.
1: हम करते थे सेटिस्फाइड कर.
3: चुप कर, बकवास बंद कर, बकवास बंद कर.
1: जैसे आप बोल रहे हो ना, ऐसी ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं वो लोग.
2: अच्छा, इससे ज्यादा दिखाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो कि मान ही नहीं रहा आपकी बात और वो डांटे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
1: सर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले हमारी बात सुने.
3: अब टेस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका, कोई पेशेंट चेक नहीं कर रहा. अब ये असलियत कह रहा हूँ, तुम्हें बोलने की तमीज है नहीं यार.
1: अभी तक
3: पेशेंट चेक कर रहे, लेकिन वाकई में तुझे तमीज ही नहीं है. मोबाइल के कस्टमर केयर में जॉब करने के लिए कह रहा है करूंगा. मोबाइल में पकड़ा कभी हाथ में?
1: बोल के
3: जॉब करूंगा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनूंगा. कस्टमर इंसान तो बन जा पहले यार, इंसान बना नहीं है.
1: खुद को देखा आपने कभी?
2: संजीव कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं है, मुझे पता चला तुमने 3 राउंड दे चुके हो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बना रहा था. लेकिन तुम पूरी तरह क्वालिफाई कर गए हो ये राउंड. तुम्हें जॉब मैं दूंगा. Okay. तुम मेरे शो में आके बैठो, मुझ पे भी कभी कभी डांट पड़ती है.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: इस गाने में जितना मौलाली ठाकुर ने सवार लो किया है उससे भी ज्यादा सवारते हमारे कतर की सड़कों को अशगाल। और ऐसे ही अब एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी अशगाल ने, जिन्होंने कहा है कि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने क्लियर किया है कि वर्क ऑफ फेज 7 ऑफ द रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वो पूरा हो गया है। #974 आपको बता दें कि कतर के बहुत सारे इलाकों में लगातार रोड इंप्रूवमेंट्स का काम चल रहा था और वेस्ट पार्ट ऑफ कतर में या नॉर्थ पार्ट ऑफ कतर में लगातार ये कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, जहां पर आने वाले टाइम में आपको सेफ्टी फीचर्स दिखाई देंगे, पार्किंग स्पेसेस दिखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क दिखाई देगा और ये ब्यूटिफिकेशन का जो जबरदस्त काम चल रहा है वो भी दिखाई देगा। और उसी में अब कह सकते हैं फेज 7 कंप्लीट हुआ है, जिसके अंतर्गत आते हैं अल सैलिया, अल घराफा, अल कराना, अल नसरानिया, अल मिसाइमेर एंड इसके अलावा कुछ और एरिया। ये टोटल लेंथ अगर इस एरिया की बात करें 39 किलोमीटर इस दौरान काम हुआ है और 285 स्ट्रीट लाइटिंग पोल्स लगाए गए हैं। कई इलाकों में जब हम जाते हैं हमें अंधेरा दिखता है, हम कहते हैं यार ये कब ठीक होगा, लेकिन देखिए लगातार अशगाल इस पर काम कर रहा है एंड ये बता रहा है कि कतर का अब इलाका इलाका जगमगाएगा, रोडें चमचमाएंगी और ये काम खुद अशगाल कर रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। क्योंकि भाई हम और आप तो अपनी जिंदगी को सवार लेते हैं उठ के अच्छी सी शेविंग करके लेडीज ब्यूटी पार्लर जाके, लेकिन हमारे कतर की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन और ब्यूटी पार्लर का काम अशगाल बेहतरीन तरीके से कर रहा है। एंड अगर आपको चमचमाती नई रोड दिखाई दे तो याद रखिएगा ये काम अशगाल की वजह से ही हो रहा है। चलिए जी, उम्मीद इसी तरह कतर के कोने कोने के काम पूरे होते रहेंगे और जल्द ही हम हर सड़क को चमचमाते और जगमगाते देखेंगे। 89.6 मिर्ची 1, आइए इस बात में एक शर्मा हो जाए दोस्त, बढ़िया मात हुई है मिर्ची।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: कतल गुरु अंधावा की आवाज में गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे भाई, ये एक तरह से हिंसक वाले शब्द का प्रयोग करके भी कितना मीठा प्यारा सा गाना बना दिया। लेकिन कोई है जो दुनिया में हर जगह पीस चाहता है और इसीलिए मीना रीजन में नंबर वन आ गया।
2: #974
0: यस, अगर हम बात करें तो रिसेंट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के मुताबिक हमारा कतर जो है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन का सबसे पीसफुल और सिक्योर कंट्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। यस, यहाँ पर हम नंबर वन आए हैं और ये अचीवमेंट दिखाती है कि इस देश ने पब्लिक में सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी के हर एरिया में जबरदस्त काम किया है। और ये अचीवमेंट है मीना रीजन में नंबर वन आना इन भाई सोशल पीस इंडेक्स। और ये बताता है, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये हमारे और आपके लिए कतर ने कितने हेल्दी तरीके से माहौल बनाया हुआ है और जिस तरह से कतर इस पर लगातार काम कर रहा है, इस आज के चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरमेंट में जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये रैंकिंग किसी भी कंट्री के लिए मायने रखती है। और नंबर वन पर आना हमारे कतर की इस अचीवमेंट को दिखाता है कि वो हमारे लिए लगातार काम कर रहा है, हमें महफूज रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। और हम इतने ही कहेंगे कि हमारे कतर ने एक इंस्पिरेशन के साथ काम किया था और अब दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज को इंस्पायर भी करेगा। बस इतना ही करिए कि यहाँ की जो बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए आप भी एक शब्द जरूर बोला करिए और वो है सुकून। एंड वही सुकून की वजह से आज ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में मीना रीजन में कतर हमारा नंबर वन आया है। एंड अ प्राउड रेसिडेंट में मस्त मौला गौरव आपको कहेगा कि बकलावा खा लो और हमको भी खिला दो, इससे का थोड़ा प्रॉब्लम है मिर्ची। इट्स हॉट।
3: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mitchie wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए सोने की भी चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि कतर में जब सोना बाहर आता है तो वो फीका पड़ जाता है भाई, सूरज चाचू की जैसे। मस्त मौला गौरव आप बता दे, गर्मी अपने चरम फेज पर लगातार कंटिन्यू करते हुए।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: दिन का मैक्सिमम तापमान 45 बोले तो 45 डिग्री सेल्सियस है, एंड दिस इज वाई आपके कार का एसी आपको दोपहर में लगता है खराब हो गया है लेकिन रात में ठीक हो जाता है। वेल 45 डिग्री मैक्सिमम, मिनिमम अराउंड 30। बड़ी बात यह है कि हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के साथ चल रही है, एंड उससे बड़ी बात ह्यूमिडिटी अपना पारा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर चुकी है। पहले ये 20s के अंदर थी, अब ये 20s के ऊपर आ चुकी है। 22% ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे बारिश आती जाएगी हमारे एशिया पार्ट में, यहाँ पर गर्मी की ह्यूमिडिटी के साथ बढ़न और होगी। लेकिन तब तक एंजॉय करो, पानी पीते रहो, मिर्ची सुनते रहो, क्योंकि गर्मी का एंटरटेनमेंट तो नहीं पता पर आपके कानों का एंटरटेनमेंट हम ही लेकर आए हैं, मिर्ची सौ।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: बादशाह, आपने इतने गाने बनाए, इतने गाने कंपोज किए, सबसे पहला रैप आपने किस पे लिखा था?
3: जो मैथ्स के टीचर है उन पे रैप लिखा था। टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक जैसे टीचर होते हैं वैसे वो थे नहीं, तो मैंने उन पे रैप लिखा जो काफी मशहूर हो गया। That was my first। दिक्कत तब हुई जब वो रैप उन्होंने ही पढ़ लिया, उसके बाद मेरा एजुकेशन पे से विश्वास ही उठ गया।
2: 2+2=4, बादशाह gave us more, inspired by true events। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
1: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
2: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है.
0: Catch Officer Brown.
3: Officer Brown.
0: Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Zee5 from 12th June.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे आप बताओ ना कि वो सुहागरात में कौन सा परफ्यूम लगा के जाऊं।
1: अरे शादी के दिन तो ना के जा।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: जी माशुका गाना खत्म हुआ कॉकटेल 2 से, उम्मीदें बहुत हो गई है लोगों को, सब तैयार हैं, फिलहाल तो आपके साथ है। एक चीज जो हमारे साथ नहीं है वो है हमारे मौसम का साथ, जो दोपहर में गाड़ी के एसी को एकदम से पिघला दे रहा है। भैया फिलहाल शाम के 5:05।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, तो बारी आ गई है देवी और सजनों शाम 5:05 ही खेलने की, जिसे कहते हैं
3: पहचान कौन।
1: और पहचान कौन में मसमोलो गौरव आपको बताना चाहेगा आज का डायलॉग, ये कौन अदाकारा है जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं।
4: आई एम रियली वन ऑफ दोज वियर्ड पीपल हु गोज टू स्लीप एट 9:30 एट नाइट, एज इज एविडेंस्ड यू शुड नो दैट आई गो टू स्लीप एट 8:30 एट नाइट, 9:30 एट नाइट, बिकॉज़ आई रिफ्यूज टू शूट बियॉन्ड अ पॉइंट।
1: हां जी, आई रिफ्यूज टू शूट बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड ये आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, इतना ही कह सकते हैं बड़ा राज गया इन्होंने हमारी इंडस्ट्री पर। एक बार फिर से सुनिए।
4: आई एम रियली वन ऑफ दोज वियर्ड पीपल हु गोज टू स्लीप एट 9:30 एट नाइट, एज इज एविडेंस्ड यू शुड that I go to sleep at 8:30 at night, 9:30 at night, because I refuse to shoot beyond a point.
1: तो भाई ये कौन है जिनकी आवाज आपने अभी भी सुनी है, 5001896, इनके फैंस तो एक सेकंड नहीं ले सकते, आराम से बता सकते हैं ये कौन है। 5001896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए कि आज ये जो मैंने आवाज सुनाई है ये किस अदाकारा की आवाज है। एंड धीरे धीरे आने लगे जवाब, आने लगे मतलब इनके फैंस अब अपनी आवाज को इनकी पहचानने लगे हैं, एंड वो बता रहे हैं कि ये जो आवाज है वो किसकी है। एक बार फिर से सुन लीजिए।
4: आई एम रियली वन ऑफ दोज वियर्ड पीपल हु गोज टू स्लीप एट 9:30 एट नाइट, एज इज एविडेंस्ड यू शुड नो दैट आई गो टू स्लीप एट 8:30 एट नाइट, 9:30 एट नाइट, बिकॉज़ आई रिफ्यूज टू शूट बियॉन्ड अ पॉइंट।
1: मतलब कह सकते हैं लेडी अक्षय कुमार वाली क्वालिटीज है, अक्षय कुमार भी रात 8 बजे तक सो जाते हैं। 5001896 पर मस्मोल और गौरव इंतजार कर रहा है आपके जवाब के वॉइस नोट का, यानी कि रिकॉर्ड करके अपने जवाब भेजिए 5001896। एंड करण ओजला आप गा के बताओ बॉयफ्रेंड गाना कैसा लगता है, मिर्ची थॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vietva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Sunil ji.
1: Haan ji.
2: Sunil ji, पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ सर। कंग्रेचुलेशंस, आप लकी विनर हैं।
1: किस चीज के जी सर?
2: सर आपका 20 लीटर पेट्रोल निकला है बिल्कुल फ्री। मैं तो सोच रहा था बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के
1: यार, बहुत बढ़िया।
2: तो सर ये आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिल कराना होगा, भरवाना होगा अपनी गाड़ी में।
1: ठीक है, अच्छा एक बात तो बताइए सर जी।
2: हाँ जी।
1: इसी का पैसे ऐसे देने पड़ेंगे कुछ?
2: नहीं सर, पैसे कोई नहीं, कोई पैसा नहीं।
1: कंडीशन वगैरह?
2: नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं है। पुराने ग्राहक है आप, ऐसे कैसे कंडीशन रख लेंगे?
1: तो ठीक है, ग्राहक पुराने ग्राहक को आदमी थोड़ा अपने समझ के कहते ना, अपने कोई ज्यादा।
2: बस सर बिल्कुल फ्री है, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा।
1: क्या?
2: पुराना लाइए, नया ले जाइए।
1: क्या भैया, पुराना क्या लाऊं भाई?
2: पुराना पेट्रोल लाओ, नया ले जाओ सर, बस यही है। और वो भी आप ही का निकला है।
1: क्या बात हुई, पुराना कहाँ से लाऊं
2: सर? पुराना जो आपने
1: पुराना वो तो जल के वो खत्म कर दिया हो
2: तो सर, जो आपने पुराना यूज किया होगा वो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
1: धुआं में कहाँ से इकट्ठा करूँ?
2: पहले तो आप बड़े दांत फाड़ रहे थे जब मैंने आपसे कहा 20 लीटर फ्री पेट्रोल है, वाह वाह जी वाह वाह थैंक यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ
1: पेट्रोल मिल गया तो मुझे बड़ी अच्छी बात है।
2: अरे अरे तो ये क्या,
1: पुराना कहाँ से लाऊं?
2: पुराना आपको लाना पड़ेगा, ये भी मैं पुराना भी। वैसे हर वक्त रोते रहते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, हम फ्री दे रहे हैं तो ला के नहीं दे सकते पुराना? यार कमाल कर रहे हैं आप। सर जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर आप पुराना ले भी आए तो भी आपको 20 लीटर पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा। हाँ मुर्गा खाने को जरूर मिल सकता है। सर मजा आ गया आपसे बात करके, मतलब आपके गुस्से से डर गया मैं।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ।
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारा है।
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of Joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June.

0: Bisham Rang Shilpa Rao Carla Samontari ki awaaz mein sunaya hai kisne
1: mast mola gaurav
0: jab main aapke saath hoon to is ghante khelte hain wo jise kehte hain
2: pehchan kaun
0: aur pehchan kaun mein ek awaaz main sunata hoon aur poochta hoon bataiye ye awaaz kiski hai aur aaj aise hi ek awaaz maine sunayi and unke fans ki jhadi si aa gayi kuch logon ka main nahi bhi play kar paunga lekin filhal naam batao
3: I am really one of those weird people who goes to sleep at 9:30 at night as is evidenced you should know that I go to sleep at 8:30 at night 9:30 at night because I refuse to shoot beyond a point
0: and trust me bahut sare sahi jawab aaye hain lekin maine koshish ki hai jo top 8 top 9 hai unko hi suna dun bhaiya kyunki bahut hi zyada jawab
4: hai hi gaurav this is balkrishna ne upar ये आवाज है अनुष्का शर्मा का अनुष्का शर्मा
5: गौरव भाई ये तो अपने काजोल है काजोल
6: हाय गौरव इट इज काजोल एंड आई एम पूनम हियर
7: ओके मस्त मोला गौरव दिस इज योगेश एंड वॉइस इज अनुष्का शर्मा
8: हाय गौरव माय नेम इज अनिल कुमार ये आवाज काजोल का है बहुत अच्छा अदाकार है थैंक यू
9: गौरव भाई ये अपनी भाभी अनुष्का भाभी है
10: गुड इवनिंग गौरव कैसे हैं आप ठीक है हाउ आर यू ओपेल यूसुफ हियर वो वॉइस है काजोल की ओके थैंक यू बाय बाय
11: अस्सलाम वालेकुम हां जी ये जो वॉइस आवाज है ये है काजोल हाँ उनकी आवाज है
0: बिल्कुल सही जिन्होंने काजोल बताया और अनुष्का शर्मा कैसे हो सकती भैया मतलब कोई भी सुन के कह देगा यार काजोल की आवाज है लेकिन आप लोगों को ना जाने कहां से अनुष्का भाभी मतलब कुछ ज्यादा ही कान में पड़ रहा है विराट भैया कहीं बैट लेके ना पहुंच जाए कि मेरी बीवी की आवाज तुम लोग बड़ा पहचानते हो 5001 96 4 मस्ट फॉलो गौरव को जवाब आप भेजते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिख कर भी भेजा है उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ उनके नाम लेना चाहूंगा जितेंद्र भाई अफसाना गोविंद एंड इसके साथ ही साथ फजलूल धीरज आसिफ मोनिका एंड मृगेश थैंक यू सो मच आप सबके जवाब के लिए एंड मस्ट मोला गौरव दिल से शुक्रिया कहता है जितने भी लोग ये जवाब भेजते हैं यार आप कॉन्टेस्ट में गजब खेलते हैं मिर्ची इट्स हॉट है कुछ कनेक्शन तभी तो आप मुझे इतना प्यार करते अब अगला कनेक्शन राबता के रूप में अरिजीत सिंह बनाने आ गए अपनी प्यारी आवाज से हमें गाना सुनाकर एंटरटेन करेंगे और हमारे दिलों को भी छुएंगे

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हवन करेंगे तो इनको करने दीजिए, लेकिन हम कहते हैं आप वो अच्छा कर्म कीजिए जिससे कुछ अच्छा हो। मस्त मौला गौरव। अरे मतलब जैसे आप अपने घर को कितना साफ रखते हैं, कोई गेस्ट आ जाए आप चाहते हैं एकदम मेरा घर चकाचक दिखना चाहिए, तो वैसे ही कतर भी हमारा दूसरा घर है भैया, और यहाँ के बीचेस ये तो हमारे घर के ड्रॉइंग रूम से ज्यादा साफ हो हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अच्छे वेदर में हम यही तो स्पेंड करते हैं, और इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हमें बुला रही है। हाँ, लेकिन ये काम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने, जहाँ पर पब्लिक क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट ने हम सबसे कहा है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कतर के बीच एंड इनलैंड को क्लीन अप कर सकते हैं। ये एक तरह से कम्युनिटी इनिशिएटिव है जिसमें सिविक एंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इसका ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए इस कैंपेन की शुरुआत जून 2026 से हुई थी। 6 जून को रासल नूफ बीच को साफ किया गया, अब इसके बाद सिमाइसमा बीच का नंबर आया, जून 13 को वहां भी ये काम हुआ, और अब आपके पास मौका है अगले 2 डेट्स पर यही मेहनत करने का। अलखराज बीच जून 20 को और लारवकड़ा फैमिली बीच ऑन जून 27, ये हमें बुला रहे हैं। दोनों के दोनों डेस्टिनेशन फैमिली एंड आउटडोर एंथुसियास्ट के लिए बेस्ट लोकेशन होती है, अक्सर हम अपने अच्छे वेदर में यही जाकर अपना टाइम पास करते हैं, तो ये हमारे घर जैसे ही है, यहां पर जाकर हमें क्लीन अप करना है। और अगर आप एज अ कम्युनिटी एंगेजमेंट चाहते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों का गैंग, वो ग्रुप जिसके साथ आप बकायदा पॉटलक करने के लिए बीचेस को चुनते हो, वहां पर अब इन्हीं दोस्तों को लेकर जाओ और वेस्ट रिमूव करो ताकि हमारे कतर के बीचेस बेहतरीन लगे, और ये कहीं ना कहीं हमारे मरीन स्पेशीज को भी सेफगार्ड करता है और हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप कतर के सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट स्टीवरशिप को आगे लेकर बढ़ेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जाकर बीच क्लीनअप का हिस्सा बनेंगे। मस्मौला गौरव आपको याद दिला रहा है हमारी जिम्मेदारी है अपने दूसरे घर को साफ रखना, दूसरा घर कतर जहां हम रहते हैं। वैसे तो हम अपने ड्राइंग रूम को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन अगर हम अपने बीचेस को साफ रखेंगे तो यहां भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा ही फायदा होगा। वो बात अलग है, कुछ लोग ज्ञान देंगे अरे यार ये सब देखो ना कितने बीच पे गंदगी रहती है, इनके घर चले जाए इनके सोफे पे इनके बेड पे गीले टॉवल मिल जाएंगे, सच बता रहे हैं। बस मौला गौरव आपके साथ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी है सर, उसको समझिए और इसका हिस्सा जरूर बनिए। मिर्ची सवार
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
3: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चा लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
2: श्रेयस यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

विशाल मिश्रा सचिन जिगर की आवाज में एक बार फिर से वही लाख रुपए का सवाल कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अरे ब्यूटी पार्लर जाके मेक ओवर करके थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके हो सकता है सर? सब हो सकता है, लेकिन आपके वॉलेट का इतना खूबसूरत होना कैसे पॉसिबल है? जब सैलरी आने के बाद आप थोड़ा बचा पाए, और अगर नहीं तो दोस्त यार आपको उधार दे पाए। हमारे वॉलेट को बिल्कुल खूबसूरती को नजर लग जाती है 10 तारीख के बाद, लेकिन आपके पास है तो अभी भी रेट सच्चे हैं जनाब, इससे पहले कि और नीचे जाएं। जो पिछले दिनों तक 26 रुपए 25 पैसे के आसपास था, वो अब 25 रुपए 97 पैसे हो गया। यस, वाहद कतरी रियाल, बोले तो एक कतरी रियाल के बदले भारतीय मुद्रा के रूप में आपको मिलेंगे 25.97 INR। आज डॉलर के अगेंस्ट रुपया थोड़ा मजबूत जरूर हुआ, 25 रुपए 97 पैसे मिले। 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.09। अगर हम वाहद कतरी रियाल के बदले पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, 76.75 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीस का रेट चल दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले 41.49 का बॉल चल रेट दाया जी, 41.49 का रेट चल भाई नहीं, घर पैसे भेजने का राइट टाइम चल। अगर हम बांग्लादेशी टका बात करें दादा, एकदम घर भेज दो ना, 1 कतरी रियाल के बदले 33.76 तो घर भेजी दिखे, क्योंकि अच्छा रेट मिल रहा है 33.76 एंड ये जल्दी नीचे और जाए, इससे पहले हम इसका फायदा उठाएं। एंड मस्ट फॉलो गौरव के साथ, ये था करेंसी अपडेट फ्रॉम आई पे मिर्ची।

0: क्या आवाज है आनंद राज आनंद साहब की, एक अलग सी फील तो देती है ये आवाज।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और सोचिए एक गाना जिसको हम सबने गाया, दिल दे दिया है, वो भी इसी आनंद राज आनंद साहब की आवाज में हमने सुना था। फिलहाल आपके साथ हूँ और मिर्ची घड़ी का टाइम बताऊँ, 6:08।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और बारी आ गई है चलाने की अपनी गानों की मिक्सी।
2: गानों की मिक्सी।
0: तो गानों की इस मिक्सी में हमने आज जो दो गानों को भिगा दिया है और परोस दिया आपके सामने, वो कुछ यूं है। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 5000186 पर गानों की मिक्सी में आज कौन से दो गाने हैं आपको यही बताना है। और एक बार फिर से हम आपको सुना रहे हैं ताकि आपके कान तेज से खड़े होकर सुने। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 ये है मेरा नंबर, जहां पर गानों की मिक्सी में कौन से दो गाने आज इंग्रेडिएंट्स के रूप में गए आपको बताने हैं। 5000186 पर जितनी जल्दी हो सके आप अगर पहचान चुके हैं तो वॉइस नोट में अपने जवाब भेज दीजिए। गौरव, जो दो गाने आपने पूछे हैं वो ये वाले हैं, फिर से एक आखिरी बार। फाइव ट्रिपल जीरो 1896 पर बस फॉलो करो, ने आपको बता दिया है। जितनी जल्दी हो सके आपके जवाब का इंतजार भी कर रहा है मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virtua la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो नवनीत
1: yeah.
2: नवनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
1: हाय नवेद,
2: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
2: आपने मैसेज किया था अपने फादर का मुर्गा बनवाने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, बन गया क्या?
2: यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने किस आदमी का नंबर दिया यार मुझे?
1: हाँ?
2: सोच समझ के नंबर देते हो नहीं देते हो? मैंने उनको फोन किया, वो मुझ पे भड़क रहे हैं यार शुरू में ही।
1: या मैं तो अपने पापा का ही नंबर दिया।
2: पापा का नंबर, नाम क्या है यार पापा का?
1: मिस्टर दिलीप।
2: उनसे मेरी बात हुई है यार। मैंने माना, मजाक अपनी जगह है, मुर्गा बनाता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, तुम्हें भी हंसाता हूँ, लेकिन यार ये थोड़ी उसका नाजायज फायदा उठा लो तुम।
1: मैं क्या कुछ गलत
2: बोल दिया यार? मैं मतलब यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मैं गालियाँ सुनूँ यार?
1: अब ऐसी बात क्या हो गई?
2: ऐसी बात क्या हो गई? अपने फादर से पूछो यार जाके। नहीं, अपने फादर से क्यों नहीं पूछते तुम जाके?
1: अब मैं क्या
2: पूछूं यार? तुम्हें पहले कहना चाहिए था मुझसे कि उन्हें गुस्सा आता है, वो ज्यादा भड़क जाते हैं यार।
1: अब गुस्सा तो सभी को आता है, ठीक से बात कर ले।
2: तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बात कर लेता यार? नवनीत कमॉन यार, ऐसे नहीं होता है। मैंने माना कि चलो एक शो है, मुर्गा बनाते हैं उसमें, ये थोड़ी यार क्या तुम उठा के किसी का भी नंबर दे दो, किसी का भी मुर्गा बनवा लो।
1: अब कुछ कुछ ज्यादा पापा ने बोल दिया।
2: अरे तो
1: तरफ से मैं माफी
2: मांगने से क्या होता है यार? ऐसी मैं माफिया मांग रहा था उनसे, मैंने माफी मांगी है 50, वो नहीं मान रहे। तुमने यार पता नहीं उठा के क्या समझ रखा है मुझे।
1: अब मैंने क्या, आपने बोला कि मुर्गा बनाना, SMS कर दो, मैंने कर दिया।
2: तुम मुझे क्या पता था यार, तुम अपने ऐसे फादर का नंबर दे दोगे यार?
1: ऐसे फादर क्या, मेरे तो एक ही फादर है, मैं ढूंढ के लाऊंगा।
2: अरे तो यार अब तुम उल्टे मुझसे बात कर रहे हो। एक तो पहले बाप की सुनिए, अब मैं बेटे की सुन लो। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या?
1: मेरा खराब नहीं हो गया, मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा हो गया।
2: इस वक्त तुम्हारा ही मुर्गा बन रहा है, मेरी तुम्हारी फादर से अभी तक बात भी नहीं। ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं यहाँ पर। वैसे तुम्हारे फादर के वाकई में गुस्से वाले हैं।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम कभी-कभी तो गुस्सा कर ही देते हैं।
2: चलो एक बार प्यार से मेरे साथ उनकी तरफ से बोल दो।
1: कुकड़ू कू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: What a lovely song, क्या बात है इस गाने को अरिजीत सिंह ने बेहतरीन गाया है। मस्त मौला गौरव। अरेबिक फील था इस गाने में और बहुत ही खूबसूरत गाना है। फिलहाल इन सब के बीच मस्त मौला गौरव ये जरूर कहेगा कि कभी कभी ना ऐसे गाने आते हैं जिनको हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आते हैं लगता है क्या शानदार गाना था। और इसे अपने कलम से सजाया था तुराज साहब ने। तुराज साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि मिस्र के बीच की उस खूबसूरती का वर्णन इस गाने में किया गया। फिलहाल हम और आप मिलकर खेल रहे हैं गानों की वो मिक्सी जिसमें मैं दो गानों को मिक्स करता हूं और आपसे कहता हूं बताइए ये दो गाने कौन से। और देखिए मिर्ची लिसनर्स का जवाब आ गया।
1: सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं गौरव भाई? सब ठीक? मेरा नाम असलान है और आपने जो दो गाने पूछे थे, एक है चौगाड़ा तारा और दूसरा है गुड़े दिल बेफिक्रे।
2: चौगाड़ा तारा रंगे ना तना एंड द अदर सॉन्ग इज गुड़े दिल बेफिक्रे, गुड़े दिल बेफिक्रे।
3: भाई जो दो गाने हैं, पहला गाना है फ्रॉम जयरात्रि चौगाड़ा, दूसरा गाना है फ्रॉम बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे। आई थिंक आई एम राइट। रेडियो मिर्ची, इट्स ऑल। थैंक यू
0: भाई,
3: एंड माय नेम इज जॉन, सॉरी।
0: बहुत जबरदस्त मिर्ची के लिसनर्स जिनके कान इतने तेज, बिल्कुल सही पहचाना है दोनों गाना। और अब से थोड़ी देर में ये दोनों गाना मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यही मिर्ची पर। फिलहाल आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और मगरिब के जान की तरफ। मिर्ची इट्स ऑल।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: फेस्टिव वाइब, दानिया वाली फीलिंग एंड लव यात्री का ये गाना सुनाया किसने? Well, फिलहाल के लिए गाना खत्म हुआ और आपके साथ मस्मोला गौरव आ गया। इन सब के बीच इतना जरूर कहूंगा, एक अलग सी वाइब है इस गाने की, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया पर फुटबॉल वाइब एकदम हावी है सर, एंड फुटबॉल के मैदान पर बहुत सारा ड्रामा इमोशन चल रहा है।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रितम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट।
0: वैसे तो फुटबॉल के मैदान में भाई फुटबॉल के साथ साथ 22 खिलाड़ियों की टकरार आपस में हो रही है, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका ए से जो टकरार हुई है उसकी बहुत चर्चा हो रही है। यस, वैभव सूर्यवंशी जो कि इंडिया ए के लिए खेल रहे थे, वो सुपर ओवर में इंडिया ए हार गई यार। उसके बाद क्या था, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसा लड़ाई झगड़ा कि एम्पायर को बीच में आना पड़ा और 15 साल का ये छोटा सा बच्चा न जाने क्यों लड़ाई करने लगा, बहस हो गई। कुल मिला के इतना ही कहना चाहेंगे, वैभव अभी तुम बच्चे हो यार, परिपक्व बनने में यानी कि मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगाओ और कोशिश करो कि यार क्रिकेट में ना लड़ाई नहीं, बल्ले से ही जवाब दो, वो ज्यादा मजा देगा। वैसे अगर बात करें तो जवाब दिया कल नीदरलैंड्स को जापान ने, जहां पर नीदरलैंड्स 2 गोल मारकर सोची थी मैच निकल गया है, लेकिन हर बार जब वो गोल करती जापान अपने गोल वापस लेता, तो 2-2 से कल का मैच बराबरी गया। लेकिन कल का सबसे शानदार काल खेला जर्मनी ने, क्वाराकाओ को 7-1 से हराकर उनके इस वर्ल्ड कप डेब्यू का मजाक बना दिया था। फिलहाल इतना ही कहूंगा, आज ये सीख रहे हैं, क्या पता अगले वर्ल्ड कप में ये स्कोर उल्टा हो जाए, 7 क्वाराकाओ और जर्मनी 1। वेल, इन सब के बीच आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को कल रात हराया, एंड इनफैक्ट आज अर्ली मॉर्निंग हराया है 1-0 से इक्वाडोर को। वहीं स्वीडन ने टूनिशिया को बुरी तरीके से 5-1 से आज के इंपॉर्टेंट मैच में हरा दिया। और आज शाम 7 बजे से जो मैच शुरू होने वाला है वो है स्पेन वर्सेस काबो वर्दे, एंड इसके अलावा रात 10 बजे बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट का मैच, देर रात आज 1 बजे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का मुकाबला उरुग्वे से, एंड सुबह 4 बजे ईरान भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम से। ये सारे मैचेस अब अगले कुछ घंटों में आप देख पाएंगे, तो अगर आप सो नहीं रहे तो फुटबॉल का फैन बनकर एंजॉय कीजिए, और अगर सो रहे हैं तो फिर हाईलाइट देखिए मेरी तरह मिर्ची इट्स हॉट। ये था आज मेरा गानों की मिक्सी का दूसरा गाना जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए, तो चलो सुनते हैं।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी.
2: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ फॉर मी लव इज डेथ.
1: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट.
3: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी है.
1: Catch Officer Brown, tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
4: अर्ज किया है
5: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आप चाहे कितना भी जान जाएं, लेकिन ब्राउन सीरीज में क्या चल रहा है ये हम ही आपको बताएंगे। मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और इस वक्त जो हमारी सिटी ऑफ जॉय है ना, उसकी सांसें थमी हुई है, क्योंकि कोलकाता की खूबसूरत गलियों में इस वक्त खून की होली खेली जा रही है। और ये होली कौन खेल रहा है, वो कौन सा बेरहम किलर है, इसी का पता लगाने आ चुकी है करिश्मा कपूर एज ऑफिसर ब्राउन। एंड आइकॉनिक करिश्मा कपूर जब कमबैक कर रही है तो इतने दमदार तरीके से कि एकदम कड़क, नो बकवास वाली, यू नो, पुलिस कॉप के रूप में। एंड आई एम श्योर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड आप देखने के बाद समझ जाओगे कि एक एपिसोड देखकर काम नहीं चलेगा, इसे पूरा ही कंप्लीट करना है। तो Z5 पर ये स्ट्रीम हो रहा है, और अगर अभी तक आपने Z5 स्ट्रीमिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो बहुत सस्पेंस से बहुत दूर है आप, ऐसा सस्पेंस जो आपके गूज बम्स ला देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। एंड अगला शिकार कौन होने वाला है, क्या उसे करिश्मा कपूर बचा पाएगी या फिर ये बेरहम किलर एक और हत्या करेगा, इसके लिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा और ब्राउन का लेटेस्ट एपिसोड देखना होगा। एंड हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, अकेले मत देखना वरना डर जाएंगे। सच में यार इतना भयंकर सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है ना कि मैं कहता हूं इसे आप जितनी जल्दी हो सके देखो, और आप तब कहोगे यार गौरव ने सही बता दिया यार, टाइम पास अच्छा हो गया। फिलहाल करिश्मा कपूर के दमदार रोल देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है Z5 का, एंड देखनी है वो सीरीज जिसका नाम है ब्राउन 89.6 मिर्ची 1 पर। वैसे तो हम कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, रसगुल्ला, मिष्टी दही के लिए जानते हैं, लेकिन इस एपिसोड के बाद हम थोड़ा थ्रिल और सस्पेंस के लिए भी जानेंगे। मिर्ची थॉट।

0: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Check. अरे मामू, मिर्ची हेल्पलाइन बता, सवाल क्या है?
1: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद, क्या करूं?
2: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी ही नहीं।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: यार ये चुनरी कितनी अच्छी चीज है, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब इसे कोई सुसाइड के लिए यूज करता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त आपसे एक इम्पोर्टेंट, शाम के 7:04 का टाइम है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यस, यहाँ पर मस्तमौला गौरव आपके साथ है दोस्तों, और बात करूंगा मैं कुमकुम भाग्य की उस एक्ट्रेस के बारे में जो शायद अचानक इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई है। यस, हम आपको बताना चाहते हैं टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य जो एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है संचिता ओगले। उन्होंने कल सुसाइड कर लिया, सिर्फ 22 इयर्स की एज थी। और मुझे नहीं लगता यार ये कैसे हो जा रहा है, उन्होंने अपनी साड़ी को फंदा बनाया और सुसाइड कमिट कर लिया। यार पुलिस भी पहुंची, सब कुछ हुआ। हालांकि वो अपने मम्मी पापा के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहती थी, लेकिन शाम को जब उनकी बहन अंजलि घर आई तो उसने देखा दीदी दिख नहीं रही है। तो उन्होंने उनके बेडरूम पर जाकर जब नॉक किया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब गेट से खोलकर अंदर गए तो पता लगा वहाँ सीलिंग फैन पर उन्होंने साड़ी को ही लेकर अपना सुसाइड कमिट किया। मैं नहीं समझ पाता यार कि इतना सारा नाम होने के बाद जब आप टीवी सीरियल में इतने बड़े रोल को प्ले कर रही हैं, लोग आपके दीवाने हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये कल ही हुआ है, यानी कि उसी दिन जब 14 जून 2020 को कोविड के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने भी आत्महत्या की थी। मुझे लगता है यार कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, लेकिन उस वक्त अगर एक फ़ोन कॉल करके हम अपनों से बात कर लेना तो शायद हम कभी भी ऐसा इरादा नहीं बनाएंगे। प्लीज अपने दोस्तों यारों से, अपने खास लोगों से हमेशा बात करते रहिए और उनसे पूछिए वो कैसा फील कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, एंड थोड़ा समय दीजिए। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई, हम अपनी दुनिया में इतने बिजी हैं कि हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। कभी कभी शायद किसी की सुन लेने से उसके मन का बोझ तो हल्का होता है और वो किसी बड़े डिसीजन को लेने से पीछे हटता है। चलिए जी, मस्तमौला गौरव आपके साथ है, और क्या ही कह सकते हैं, बस इतना ही कहना है कि हम और आप जिंदगी को इतना आसान बना सकते हैं छोटी सी चीजों को दूर कर, पर कभी कभी शायद हम दुनिया में अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। पर मैं ये मानता हूँ हारना कभी नहीं चाहिए, हमें जब ऊपर वाले ने जिंदगी दी है जब तक कोशिश होगी हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मिर्ची थॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietva la burka. Milci, burka.
2: Hello. Hello.
3: Hello, Mr. Anil.
2: Anji.
3: Mr. Anil, तीनों आ गए हैं.
2: तीनों आ गए?
3: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की. तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं.
2: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
3: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर.
2: फिर
3: एक सेकंड, इन बच्चों ने तो दिमाग, एक सेकंड रुको बच्चा, एक सेकंड, इसने पॉटी कर दी है शायद, एक सेकंड रुकिए. हाँ सर एक सेकंड होल्ड करिए, इसने पॉटी कर दी शायद. हाँ सर, ये मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ. आपने रिक्वेस्ट दी थी ना बच्चा अडॉप्ट करने की, तो आप आके देख लीजिए इनमें से कौन सा बच्चा पसंद है.
2: आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिला है आपने.
3: तो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है. बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी.
2: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से है, मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई.
3: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भर गया यहाँ पे आके.
2: कौन बोल रहे हैं भाई
3: आप? कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं. तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं.
2: क्या तरीका है,
3: क्या तरीका
2: कर रहे हैं आपने? यार मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो?
3: अनिल बंसल आप ही हैं.
2: अनिल बंसल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है.
3: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं. अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार?
2: आप पहले कंफर्म तो करो कम से कम.
3: कंफर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार.
2: तो बात करो, एक तरीका है बात करने का
3: यार, तरीका आप. ओ बच्चा चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको. यार अनिल जी कमाल कर दिया आपने.
2: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर.
3: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने

0: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
1: तुमने अगर अगली बार फोन कर दिया ना, तेरे को ही गोद दिलवाऊंगा, ये बच्चा समझ गया?
2: नहीं सर, मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: क्रेप्स वाली खबर पे तो कुनाफा बकलावा की एक ट्रीट बनती है। अरे भाई, हमारा कतर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मीना रीजन में ग्लोबल पीस इंडेक्स पर रैंक 1 आया है। बता दें, नेशनल प्लानिंग काउंसिल ने इस अचीवमेंट को हम तक पहुंचाया है, जहां पर कतर की पोजीशन को नंबर 1 पोजीशन मिली है, जिसमें मोस्ट स्टेबल एंड सिक्योर कंट्री। जिस तरह के भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहे हैं, उसमें भी रीजनल एनवायरनमेंट के बावजूद हमारा कतर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका यानी कि मीना रीजन में नंबर 1 पीसफुल कंट्री है। और मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है सर, ये हमारे कतर के उस सेफ्टी सिक्योरिटी को एक तमगा मिला है, जिसके लिए वो पिछले दिनों पूरी दुनिया में जाना गया था। वेल, यहां की सोसाइटी हो, सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, सब कुछ बेहतर हुआ है। और चाहे दिन हो या रात, हम कतर की सड़कों पर बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। पूरे कतर में हमें ये फीलिंग आती है कि ये हमारे घर जैसा ही है, और इसीलिए हम यहां के सारे इंस्टीट्यूशंस को, यहां की हुकूमत को दिल से सलाम करते हैं। और बेसिकली ये जो रैंकिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, उस कंट्री के सिक्योरिटी की बात करें, किस तरह से वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से आ रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इन सारी चीजों पर ये मोहर लगती है। और मीना रीजन में कतर का नंबर 1 होना हमें बता रहा है कि हम जिस देश में रहते हैं क्या मजेदार देश है। एंड ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन बनाई जा रही हैं, इस उम्मीद में कि इसके बाद आप एक बकलावा तो हमको खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: में गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो

मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के 16 श्रृंगार वाली नारी तो तैयार है, आप ग्रैंड फिनाले की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, आईपीएल मिर्ची मॉमी अवार्ड्स सीजन 5 की टॉप 16 फिनाले की फाइनलिस्ट हमारे साथ हैं और ये सारी कंटेस्टेंट बिल्कुल तैयार हैं, हर दिन अपनी तैयारी कर रही हैं। ग्रैंड फिनाले की डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है एंड हम थैंक यू कहना चाहेंगे उन सारे स्पॉन्सर्स को जो हमारे साथ आए और इस मुहिम में हमारा साथ दिया। यस, पिज्जा पार्टनर पापा जोन्स, हाइजीन पार्टनर हाइजीन, रिफ्रेशमेंट पार्टनर बलादना, वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, हमारे फ्रेग्रेंस पार्टनर हैं फरीदी परफ्यूम गैलरी, इसके अलावा हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर है चस्का रेस्टोरेंट, हमारे ज्वेलरी पार्टनर स्काई ज्वेलरी, शुगर फ्री पार्टनर ट्रॉपिकाना स्लिम एंड आईवेयर पार्टनर अल्फा हेड ऑप्टिक्स, साथ ही साथ विजुअल मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, ये सब एक साथ आए हैं ताकि हम मॉम्स को सेलिब्रेट कर सकें और सीजन 5 में टॉप 16 कंटेस्टेंट को हम एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां पर वो अपना हुनर अपना टैलेंट हम सबको दिखाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट, जल्द ही होगी फाइनल डेट की अनाउंसमेंट। कीप लिसनिंग मिर्ची फॉर ऑल द अपडेट्स। इट्स हॉट।

अमित त्रिवेदी के आवाज में नैना दा क्या कसूर। और जब कसूर शब्द याद आता है तो मुझे वो फिल्म याद आती है लीजा रे आफ्ताब की। हाँ जी, कितना बेचैन हो के टॉर्च वाला क्या गाना था यार, यू नो इफ यू नो। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव ये कहेगा लीजा रे का एक टाइम का सबसे बड़ा फैन मैं ही था। फिलहाल लीजा रे से आगे निकलकर जिंदगी की रे ऑफ होप की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आज का फुटबॉल मैच शुरू हो चुका है जो कि चल रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। यस, वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात कर रहा हूं, जहां पर आज का मुकाबला स्पेन वर्सेस काबो वर्दे के बीच चल रहा है। एंड इसके बाद आपको रात 10 बजे बेल्जियम इजिप्ट का मैच मिलेगा। देर रात 1 बजे यानी कि कल अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock आपको सऊदी अरेबिया वर्सेज उरुग्वे का मैच, और भोर में 4 बजे ईरान वर्सेज न्यूजीलैंड। बिल्कुल मिलाकर इतना सारा फुटबॉल का फन जो है वो चल रहा है और मिस नहीं करना है दोस्तों। हालांकि बहुत सोते सोते भी देख रहे हैं, पर चलेगा क्योंकि हम फुटबॉल फैन हैं। एक एक गोल को अपनी आंखों से देखना ही टारगेट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैच कैच कीजिए, और जब अल नाबी बोले तो अपनी कतर की टीम मैदान पर है। दिन हो रात हो भोर हो देखना ही देखना और चीयर अप करना, इस बार लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। मिर्ची पर मस्त मौला गौरव सिंह चट बाय, मिलते हैं कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में। मस्सलामा बेबी मिर्ची हरारा खतीर इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी. और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है. कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं. और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच. हाय, इट्स मी सुरेन एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन, द मिर्ची टॉप 20. एंड आज के एपिसोड की शुरुआत कर रहा हूं विद अ रहमान सॉन्ग फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, विच इज अ डीसेंट साउंडट्रैक, लेकिन ये रॉकस्टार या हाईवे के लेवल की नहीं है. ये बात आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ. द सॉन्ग्स हैवंट कनेक्टेड द सेम वे, बट हियर इज अ नाइस सॉन्ग मस्कारा, जिसे गाया है निलंजना घोष दास्तीदार ने, एंड इट इज ऑन नंबर 20.
6: नंबर 20.

0: कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? This epic film is re-releasing, so watch it अगर आपको वक्त मिले। फिलहाल मिर्ची .20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में one of my favorite tracks on the show, this is चांद मेरा दिल on number 18.
1: Number 18.

0: Mirchi.
1: Discabana, buscabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू तानिया प्लीज?
3: स्पीकिंग।
4: ओके तानिया, मैं पीयूष बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। तानिया, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। हम एक शो शुरू करने वाले हैं, नखरों के खिलाड़ी।
3: अच्छा।
4: ऐसा होता है कुछ लोगों में कि नखरे होते हैं। मुझे आपका किसी ने नंबर दिया और उन्होंने बताया कि ये कुछ बहादुरी के काम कर चुकी हैं, कुछ डेयरिंग काम आपने किए हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे?
3: जैसे कि मेरे मोहल्ले में ही एक लड़का है, बहुत बदतमीजी करता था लड़कियों के साथ। तो उसको कोई सबक ही नहीं सिखा रहा था। तो तानिया ही थी पूरे लोकेलिटी में जिसने उसको एक चाटा लगाया।
4: और
3: अब वो उस मोहल्ले में नजर ही नहीं आता है बंदा।
4: अरे ग्रेट। तो अब मतलब कुल मिला के आपको डर तो नहीं लगता ऐसे कामों से?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता।
4: ओके, आई होप कि आप सिलेक्ट हो जाए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक मौका है कि आप हमारे इस शो नखरों के खिलाड़ी में आ सकती हैं।
3: आ सकती हूँ मैं उसमें?
4: बिल्कुल आ सकती हैं। दो एपिसोड जो हैं वो शूट हो चुके हैं, अगला दिल्ली का है, तो दिल्ली की कुछ लड़कियाँ आएंगी। तो आप मुंबई आ सकती हैं नेक्स्ट वीक?
3: बॉम्बे आने के लिए पहले घर में बात करनी पड़ेगी मुझे।
4: जैसे आप और शोज देखती हैं खतरों वाले, उसमें ये होता है कि सांप वांप खाते हैं या मुंह से निकालते हैं या जंप करते हैं या? हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है।
3: आपका क्या है?
4: उसमें ये होगा कि आप जैसे खड़ी हुई हैं, कैमरा आपके सामने है, एक्शन बोलने के बाद एक बहुत बड़ा चाकू आपकी गर्दन पे रखा जाएगा।
3: ठीक है।
4: और एक मशीन आपकी गर्दन के पीछे से आपकी गर्दन को पुश करेगी। तो हम मशीन में जितनी पावर है उसको बढ़ा के आपकी गर्दन के आर पार चाकू कर देंगे, और जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी वो बाल्टी इधर उधर लगा के हम खून सारा जमा कर लेंगे। मतलब अगर आपकी गर्दन कट गई है और ब्लड ग्रुप एक है तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने लायक आप जाएंगी।
3: नेक्स्ट राउंड के लिए बचूंगी तब जाऊंगी ना, जब सारा ब्लड ही निकल जाएगा तो मैं करूंगी क्या सेकंड राउंड में?
4: सिर तो आपका है, वही तो मैं काटने की बात कर रहा हूँ। और आप ही कह रही है मैं बहादुरी के काम कर लेती हूँ, फिर आप ये नखरे दिखा रही है।
3: नहीं, मना क्या कर रही है, तो पागलों वाला गेम लग रहा है।
4: हेलो,
3: समझ नहीं आ रही, जब मैंने बोल दिया है मैं नहीं करना चाहती हूँ ये शो।
4: तानिया, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और आपका जो दोस्त है अमित, उसने मुझे नंबर दिया था, उसने कहा था इसका मुर्गा बना, तो मैंने बना दिया यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
5: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, नंबर 17।

वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री AKA बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं।

0: देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में। अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, एआर रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो उसे म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना बाय एआर रहमान एंड इरशाद कामिल।
1: नंबर 16।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो। पड़े अगर तेरे

देखिए कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है, और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल, इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोज में।

dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी. पिक ऑफ द वीक.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विद्या बालन, आपने 40 से ज्यादा फिल्में कर ली, 2014 में पद्मश्री कमा लिया, इतने सारे इयर्स ऑफ अचीवमेंट के बाद डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग यू फिल्म्ड फॉर?
4: ऑफ कोर्स कस्तो मजा परिणीता से, और शिलीगुड़ी में शूट हुई थी इस गाने की और बहुत मजा आया था। इतने लोग थे और पीरियड फिल्म है, लोग स्कूटरों पे और मोटर बाइक्स पे गाड़ियों में आ रहे थे एंड वी कुडंट हैव दैट इन द शॉट। सो हम लोग ट्रेन पे थे और हम लोग ट्रेन एक तरफ लेके जाते, फिर पता चलता कि जब मॉनिटर देखते तो पता चलता कि ये गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं गाने में, तो फिर से हम लोग रिवर्स में आ जाते, फिर शूट होता। एंड इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, इट्स आल्सो माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम परिणीता।
3: ओह दैट्स अ टफ वन विद्या बालन, परिणीता का हर गाना इतना गोल्डन है, इट्स टफ टू चूज अ फेवरेट। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना well, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में नई बीट नया ड्रॉप नया इफेक्ट नई लेयर और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए
1: इश्क

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: ओह यस, इट्स मिर्ची हेल्पलाइन, टेल मी।
2: यार रोज सुबह लैपटॉप लेके कुछ लिखने के लिए बैठता हूँ, नोटपैड भी खोलता हूँ, पर लिख ही नहीं पाता, क्या करूँ?
3: लिख नहीं पाता हूँ क्या करूँ? सिंपल मैन, नया कीबोर्ड ले ले।
4: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
5: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

नचाया है, हंसाया है, रुलाया है, डराया है, धमकाया है, हर तरह से एंटरटेन किया है इस बंदे ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ द वंडर कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। और मुझे ना ऐसा लगता है मुझे छोटे होते इन पे ना ऐसा छोटा सा क्रश था, क्योंकि मैं इनकी सारी फिल्में देखती थी भाई, सारी फिल्में, चाहे वो टीवी पे आ रही है, चाहे वो VCR पे चल रही है, चाहे थिएटर, तो चलो उतना तब जाने को मिलता नहीं था, लेकिन आई वुड नॉट मिस मिथुन चक्रवर्ती फिल्म। फिर चाहे वो 80s की जो फिल्में थी ना उनकी, जिसमें वो ऐसे डायलॉग्स होते थे, साला तेरी आपड़ी की तोपड़ी, लोहा, इलाका, गुंडा, गुनाहों का देवता, प्यार का देवता, देन कट टू 90s फिल्म्स लाइक जल्लाद, यमराज, रावण राज, चीता, सारी फिल्में भाई। और उनकी पहली फिल्म मैंने पता है कौन सी देखी थी VCR पे, प्यार झुकता नहीं। उसमें वो जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सा उनका किरदार होता है, वो जिस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी से उस फिल्म में प्यार करते हैं, बस तभी शायद वो छोटू सा प्यार हो गया था। हा? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो मिस्टर अनिल।
1: हाँ जी
2: मिस्टर अनिल, तीनों आ गए हैं।
1: तीनों आ गए?
2: सर मैं ये चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से बोल रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी ना बच्चा गोद लेने की, अडॉप्ट करने की, तो सर तीन है हमारे पास, आप आके देख लें, इसमें से चूज कर लें, फिर आपकी सारी वो फॉर्मेलिटी पूरी करके कर देते हैं।
1: कौन बोल रहे हैं भाई साहब?
2: मैं चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से राकेश बोल रहा हूँ सर।

0: नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो रही है कोई, आप गलत मिलाया है आपने।
1: वो गलत फहमी की बात नहीं है, गलत फैमिली आपकी है, बच्चा है नहीं तो गोद ले लो, फैमिली सही हो जाएगी।
0: अरे मैं क्यों लूंगा यार बच्चा गोद, मेरे पास पहले से ही मेरा अपना बच्चा है, मैं क्यों गोद लूंगा भाई।
1: तो अनिल जी आपको ये पहले सोचना चाहिए था यार, जब आपने ये एप्लीकेशन भरी है यहाँ पे आके।
0: कौन बोल रहे हैं भाई
1: आप, कमाल कर रहे हैं, भड़क रहे हैं, तीन बच्चे मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, रो रहे हैं।
0: भड़क आप रहो भाई, क्या तरीका है,
1: क्या तरीका
0: कर रहे हैं आपने यार। मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी, आप क्या बोल रहे हो।
1: अनिल बंसल आप ही है,
0: अनिल बंसल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है।
1: सर कमाल कर रहे हैं आप, बार बार मुझ पे थोप रहे हैं। अब ये तीन बच्चे कौन लेगा यार,
0: आप पहले कन्फर्म तो करो कम से कम।
1: कन्फर्म करके ही बोल रहे हैं यार आप, एक बच्चा तीन नहीं तो एक बच्चा तो गोद ले लो यार।
0: बात करो, एक तरीका बात करने का
1: यार, तरीका आप।
2: ओ बच्चे चुप हो जाओ, वो गुस्सा आ गया उनको।
0: हेलो
1: यार अनिल जी, कमाल कर दिया आपने।
0: मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ, आपके आपकी बकवास सुन रहा हूँ बैठकर।
1: सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सारी बातें कही थी, एक बच्चा इसमें एक साल का, एक बच्चा सात महीने साढ़े सात महीने का, एक बच्चा एक साल तीन महीने का है, आपको जो पसंद आता है।
0: कितने भी महीने का हो तुम ले लो फिर अपने पास, तुम अडॉप्ट कर लो, फिर मुझे नहीं चाहिए।
1: अरे मुझे तो खुद किसी ने गोद ले रखा है यार, मैं कैसे ले लूँ। आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं यार, आप अपनी बात करो यार।
2: नहीं सर मुझे तो वैसे ही रेडियो मिर्ची ने गोद ले रखा है। अनिल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बच्चा है रोहन, ये उसी का बवाल है सारा, आपका मुर्गा बना दिया।
0: यार कमाल कर दिया भाई, कुकड़ों को भाई।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

जमीन पर पैर तो जम चुके थे पर आसमान की उड़ान अभी बाकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ द फिनोमिनन कॉल्ड मिथुन चक्रवर्ती की। 1976 में मृग्या जैसी फिल्म में नेशनल अवार्ड जीत के मिथुन ने कुछ 50 फिल्में की होंगी और उसके बाद आया उनके करियर का पिनिकल, वो शिखर, वो ऊंचाई जिसके लिए वो बने थे, 1982 के इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर। जिन लोगों ने उस टाइम इस फिल्म के सक्सेस को विटनेस किया है ना, वही बता सकते हैं कि वो क्या सेंसेशन, क्या रेवोल्यूशन था। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या होते थे 1982 में 100 करोड़? क्या एशिया, क्या अफ्रीका, क्या यूरोप भी? डिस्को डांसर का जिमी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे, खास करके रशिया में। ही वाज सो पॉपुलर कि एक बार जब मिथुन रशिया गए तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को एक रैली कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि सारी पब्लिक एयरपोर्ट पहुंच गई मिथुन को देखने के लिए। वो शाइनी डिस्को बॉल्स वाले स्टेज पे चमक धमक वाले कपड़े पहन के, सर पे बैंड लगा हुआ, हाथ में माइक, पब्लिक पागल हो गई थी जब डिस्को डांसर के जिमी ने ये पूछा था,

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: She wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi, ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

अर्ली 80s में पूरा इंडिया डांस डांस हुआ पड़ा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी चीज पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर डिस्को डांसर ने हाय तौबा मचा के रखी हुई थी। और इसके बाद ना मिथुन दा को थोक में फिल्मों के ऑफर आने लग गए और वो कर भी रहे थे। मैंने उनका एक पुराना इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने 1987 का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वो एक साथ कुछ 30-32 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मिथुन दा की फिल्मों का ना उस टाइम पे अपना ही एक अलग यूनिवर्स होता था, उसका बाकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता था बिकॉज ये फिल्में आपस में ही कॉम्पिटिशन करती रहती थी। 1989 में मिथुन दा की कुछ 19 फिल्में आई थी, 1.5 फिल्म पर मंथ के हिसाब से लगा लो। एंड लेट मी टेल यू, सारी की सारी फिल्में हिट हो रही थी। एक फिल्म हिट हो रही है, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, अलग ही इंसेप्शन चल रहा है। चलिए अभी बातों पे ब्रेक, अभी गाना सुनेंगे डिस्को डांसर मूवी का। टाइटल ट्रैक नहीं, वो तो हम सुन चुके हैं, अभी हम वो गाना सुनेंगे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, मुझे लगता था ये गाना वो अपने लवर के लिए गा रहा है। जब मूवी देखी तो पता चला ये गाना वो अपनी मदर के लिए गा रहा है, वो माँ जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको याद कर रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिथुन चक्रवर्ती ने, जी हमारे प्यारे मिथुन दा ने कुछ 350 फिल्मों में काम किया होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके अलग अलग रोल्स देख के ना, उनकी परफॉर्मेंस देख के ऐसा यकीन नहीं होता कि ये सेम बंदा है। अभी 4 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वो बहुत ही ऑफ बीट नॉन कमर्शियल टाइप की फिल्में हैं वो। फिर फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। मतलब कितनी वैरायटी, क्या रेंज है बंदे की। 80s में वो किस तरह के थे फिल्मों में, 90s में वो किस तरह के हो गए, और इनके डायलॉग्स अलग ही तरह के आइकॉनिक रहे हैं। 80s में तो भरमार लगा हुआ है, यू नो वो वाले जो डायलॉग्स होते थे, ऐ साला तेरी अपड़ी की तोपड़ी, या तेरी जात का बैदा मारूं, या तेरे नाम का कुत्ता पालूं, या कानून और देवता जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। बट मेरा फेवरेट पता है कौन सा है? जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसी फिल्म का एक गाना भी है जो आई एम 100% श्योर आपको पसंद है। मूवी का नाम है गुलामी, डायलॉग है कोई शक, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Check. अरे अरे मामू, Mirchi Helpline. बता, सवाल क्या है?
1: मुझे स्टेडियम में मैच देखने तो जाना है, पर भीड़ नहीं पसंद. क्या करूं?
2: अरे तो सिंपल है ना गोचू, तू दूसरे स्टेडियम में जाके फोन में मैच देख लेना, वहाँ भीड़ होगी नहीं.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस Mirchi हेल्पलाइन पर. व्हाट्सएप ऑन 8422983983. इट्स हॉट.

आपको पता है एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी को हेमा मालिनी जी की मदर ने एक पार्टी में नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे आप पुराने जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, बिंदिया गोस्वामी जब एक टीनेजर थी तब एक पार्टी में हेमा मालिनी जी की मॉम ने उनको देखा और सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल हेमा जैसी दिखती है। तब उन्होंने, हेमा मालिनी जी की मदर ने, बिंदिया गोस्वामी जी को प्रोड्यूसर्स को रेकमेंड करना शुरू किया। तो इनकी फर्स्ट फिल्म थी 1976 की जीवन ज्योति, विच वॉज अ फ्लॉप फिल्म, लेकिन धीरे धीरे उन्हें नोटिस किया जाने लगा। फिल्म्स लाइक खट्टा मीठा, गोलमाल, दादा, शान। एक्चुअली कितनी प्रिटी थी बिंदिया गोस्वामी, मतलब उनके बाल कितने सुंदर थे ना, लंबे लंबे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: क्या बना?
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: बेटा, आप घर आ जाओ, मामा परेशान है, खाना खा ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज होके नहीं जाते घर से, आ जा।
4: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
5: बेटा आ जा, एक आवाज भी नहीं आ रही। हेलो
4: हेलो
5: बेटा।
4: अरे अंकल, आप ये तो बताइए, बोल कौन रहे हो?
5: देख, अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे नाराज ही होते बेटा। एक तो बुढ़ापे में तू ही सारा, दूसरे ये कान से सुनाई नहीं देते, और तू चला गया। हेलो बेटे, क्या हो गया?
4: अंकल मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
5: तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, घर आ जा बेटे।
4: अरे अंकल ये तो बताइए, आप बोल कहाँ से रहे हो?
5: बेटे ऐसे नाराज होते हैं तो
4: जानते। अंकल मैं आपका लड़का नहीं हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है।
5: बेटा नहीं, ऐसे ये नाराजगी होती है तो ऐसे घर छोड़ कर जाते हैं।
4: माता जी से बात करा दीजिए।
5: बेटे आजा बेटे।
4: अंकल माता कहाँ है?
5: छाता बेटे, छाता भी देंगे।
4: छाता नहीं अंकल, माता आप अपने कान के बात।
5: बेटा कोई गलती हो या देख तो बेटा माफ कर दे, ऐसे नहीं जाते।
4: अंकल मैं वो नहीं हूँ आपका लड़का, आप मुझे मत फोन करिए।
5: अरे बात मेरी बात,
6: इतनी जल्दी नाराज हो गए भाई, मेरे तो कान चलने लगे। दोबारा मिला।
4: हेलो
5: बेटा। हेलो
4: अंकल, आप परेशान हो रहे हैं, आप क्या नंबर मिला रहे हो?
5: हेलो बेटा, घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूं?
4: अरे अंकल मेरे बात कर, मैं
5: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
4: आपने नंबर क्या मिलाया मुझे?
5: कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, अरे जो चाहिए दे देंगे। आ जा बेटा।
4: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
5: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्यों?
6: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो भाई?
4: क्या भाई, मेरा गला पूरा आपने दुखा दिया।
5: वैसे घर कब आ रहा है? घर कब? मैं खाना करवा दूँ?
4: अरे अंकल आपका बेटा नहीं हूँ मैं,
5: अगर आप तू आ जाएगा तो आज
4: आपने नंबर क्या मिलाया मुझे?
5: तो कान में सुनाई दे बेटा, तेज बोल भाई जी, अरे जो चाहिए दे देंगे। आ जा बेटे।
4: अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज फोन ना करिए।
5: हेलो, मैं फोन तो करना पड़ता बेटे।
4: क्यों?
6: क्योंकि किसी को मुर्गा बनाना पड़ता है। विक्रम, मैं रेडियो

ये तो आपको पता है ना कि 1980 में बिंदिया गोस्वामी एंड विनोद मेहरा इन्होंने चुपके शादी की थी। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसकी मेन वजह ये थी कि विनोद मेहरा साहब का अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ था। इस वजह से बहुत सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पे तीन परिवार जुड़े हुए थे, और इस सब की वजह से चार साल के बाद ही 1984 में ये दोनों अलग हो गए। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी जी जेपी दत्ता साहब से भी मिली और दोनों ने शादी कर ली। उस दौरान बिंदिया गोस्वामी जी ने अपना करियर भी छोड़ दिया था। वैसे काफी साल बाद जेपी दत्ता साहब की जो फिल्में थी, चाहे वो बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया था बिंदिया गोस्वामी जी ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: Victory wishes Team Al Anabi Qatar on their first ever FIFA World Cup point.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स with Charu, only on Mirchi.

हिंदी फिल्मों के मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स में से एक थे ओम प्रकाश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप। भाई इनका जन्म 1919 में कोई कहता है जम्मू में हुआ था, कोई कहता है लाहौर में हुआ था, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इनके फादर के दोनों जगह पे घर थे। खैर, बचपन से इनको संगीत, अभिनय, फिल्मों का शौक था। इन्होंने संगीत भी सीखा और शहर में जो नाटक ये सब जो होता था उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते थे। और धीरे धीरे इनकी जीवन और करियर की गाड़ी नॉर्थ इंडिया से बॉम्बे पहुंची और फिर इन्होंने अपना एक आइकॉनिक फिल्मी करियर बनाया। क्या क्या किरदार निभाए हैं ओम प्रकाश जी ने भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने पब्लिक में अपनी बीवी के लिए गाया था?
4: आई रिमेम्बर द फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग फॉर माय वाइफ वाज अ कंपोजिशन बाय सचिन देव बर्मन साहब एंड आई वाज इन कॉलेज। आई वाज सिलेक्टेड टू सिंग इन द टैलेंट कॉन्टेस्ट में था और वहां मैं गा रहा था एंड आई जस्ट कम टू नो हर। आई वाज फाइंडिंग आउट वेयर शी इज, तो आखिर से बोला तू कौन सा गाना गाने वाला, तो जहन में गाना याद आ गया, लुकिंग वेयर इज शी, वेयर इज शी, वेयर इज शी, तू कहां ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना है।
3: Only imagine the kind of romantic you are। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: Only on मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, Only on

0: किशोर कुमार के बारे में कहने के लिए कितना कुछ है भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सिर्फ हम लोगों के पास नहीं, पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस से अगर आप सुने उनके पास भी बहुत कुछ है। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में माला सिन्हा जी ने किशोर दा के बारे में क्या कहा था।
1: सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी अगर सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना अपना बेवकूफ, और एक पिक्चर किया था मैंने बम्बई का ठग। अरे सेट पे एक मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, हर एक का नकल, एक मिनट चुप नहीं। वो थे कॉमेडियन, स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे।
0: इसी बात पे किशोर दा का एक फन सॉन्ग सुन लेते पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: It's hot.

0: mid-70s में पब्लिक ने एंग्री यंग मैन वाले रोल्स पसंद करने शुरू कर दिए और इसीलिए सॉफ्ट रोमांटिक इमोशनल हीरो वाले रोल्स आउटडेटेड हो गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए राजेश खन्ना का सुपरस्टार का टाइटल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन की सुपरस्टारडम के बारे में राजेश खन्ना जी से एक बार जब पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: जो जिसकी किस्मत है और जो जिसका काम है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, डेस्टिनी है आपकी। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जब उन्होंने आनंद में मेरे से काम मेरे साथ शुरू किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे, मैं तो बहुत बहुत ही उनको मुबारकबाद दूंगा और आई विल बी वेरी हैप्पी और आई विल बी एनवीइंग हिम कि इस मुकाम पर पहुंचना और ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत गर्व की बात है, उन्हीं के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और जनता के लिए भी।
0: अच्छा, राजेश खन्ना अपने सुपरस्टार टाइटल के बारे में क्या सोचते थे, सुनिए उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: नहीं जी, स्टार तो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर था, एक्टर हूँ और एक्टर रहूँगा। स्टार बीच में मैं कहीं बन गया था, जिसे सुपरस्टार कहते हैं, स्टार जो भी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक्टर को मैं जानता हूँ, था, हूँ और हमेशा रहूँगा।
0: चलिए अब ऐसी फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि यस, इस टाइटल के ये दोनों वाकई में हकदार थे। आनंद फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

0: अब मुझे अब पता चला
1: भाई कौन बोल रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भाई।
0: अब मुझे मुझे अब बताया उसने तू भी यार तू एक नंबर का आइटम। मेरी
1: भाई
0: मुझे आप बताया असल मैं वहां गया हुआ था। अबे मुझसे कह रहा
1: अबे अरे भाई ये तो बता दे कौन बोल रहा है क्या बात है।
0: तूने नताशा को प्रपोज कर दिया भाई सबके सामने।
1: अबे भाई कौन लताशा।
0: नताशा यार नताशा को प्रपोज नहीं किया।
1: अबे भाई कौन लताशा मैं तो लताशा को जानता भी नहीं।
0: तो तू पहले मुंह नहीं फाड़ सकता था।
1: भाई तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया भाई तू तो हंसता ही रहा।
0: अबे तो तुझसे पहले नहीं बोला जा सकता था। मैं तो हंस रहा था तू तो चुप था। बता देता मुझे मैंने नताशा को नहीं छेड़ा मैंने नताशा को प्रपोज नहीं किया। मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह। नहीं मैं हंसे जा रहा हूँ की तरह और तू मजाक उड़ा रहा है मेरी।
1: मैं कैसे बोल देता जब तू हंसे जा रहा है। सुनने का मौका नहीं दिया। मैं हेलो हेलो करे जा रहा हूँ।
0: तू तू शुरू में कह रहा था कि मैं नहीं बोल रहा मैंने नताशा को नहीं छेड़ा रॉन्ग नंबर लग गया ये बोलने में तेरा मुंह फट रहा था क्या। पांच साल में हंसी आती है वो भी बर्बाद कर दी। तू पहले नहीं बता सकता था मुझे कि मैं नहीं बोल रहा।
1: फोन तूने करा तूने
0: मैंने क्या फोन मैंने क्या तो तेरे हाथ में तो था तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। तू ये दिमाग खराब कर रहा है ऊपर से।
1: मैं तो पूछा वो तू बोल कैसे रहा भाई।
0: भाई मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसी किसी का नंबर मिला दिया आपका लग गया। मैं आपका मुर्गा बना रहा था थोड़ी सी मजाक करी और वो अच्छी खासी।
1: तो भाई ये बात पहले बता देते यार इतना तुमने आसवा दिया टेंशन अलग दे दिया।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 मिर्ची।
3: पुरानी जींस with Charu only on

भाई 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म आई थी, इसने अपना एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लिया था फिल्म फेयर अवार्ड्स का। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 13 नॉमिनेशंस में से इसे 7 अवार्ड मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्टर, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। और ये रिकॉर्ड फिर तोड़ा DDLJ ने 1995 में 10 अवार्ड जीतकर। चलिए, अवार्ड का आना जाना तो लगा रहता है, मेन बात है दिल जीतना। और मैंने प्यार किया फिल्म ने ये काम बखूबी कर लिया था सबसे दोस्ती करके। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सो रिसेंटली मैंने मूवी देखी 1972 की जोरू का गुलाम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है काका राजेश खन्ना एंड नंदा और ओम प्रकाश साहब भी हैं। सो बेसिकली ओम प्रकाश साहब बहुत रईस होते हैं, उनको अपने पैसे पे घमंड होता है। उनकी बेटी नंदा, इनको प्यार हो जाता है राजेश खन्ना साहब से, जो एक पेंटर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, और ओम प्रकाश जी की मर्जी के खिलाफ ये उनसे शादी कर लेती है नंदा। अब सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनते हैं कि राजेश खन्ना साहब को घर में नौकर बनके जोरू का गुलाम बनके रहना पड़ता है। उस वजह से क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, क्या क्या गूफ अप होते हैं, इज सो मच फन। राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग, ओम प्रकाश साहब की एक्टिंग, टू गुड। इसी बात पर काका जी की फिल्म का ही गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: श्रेयस तलपड़े आपकी सबसे पहली हिंदी फिल्म इकबाल थी, लेकिन क्या आपको याद है सबसे पहला गाना आपने कौन सा शूट किया था?
4: एक्चुअली टेलीविजन सीरियल का हमने एक टाइटल सॉन्ग शूट किया था, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वाज द वन व्हिच वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज सच। मराठी गाना था वो, टाइटल था सीरियल का बेधुंद मना चा लहरी। इट वाज लाइक बेधुंद मना ची लहर लहरी चा होती लाटा लाटा होता कहर किनारा शोधती हजार वाटा।
3: श्रेयस, यू आर नॉट ओनली अ गुड एक्टर, यू आर अ फाइन सिंगर। मुझे लगता है आपको ये वाला ऑप्शन अब एक्सप्लोर करना शुरू कर लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अर्ज किया है परवीन शाकिर नाम की शायरा है, उनका ये शेर है। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं शेर ये नहीं था, शेर अभी मैं सुना रही हूँ। वो बचपन की नींद तो अब ख्वाब बन गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। इसी बात पर बच्चों के लिए नींद पर एक पोएम सुनिए, शौकत परदेसी की पोएम है नींद परी। शाम ढली हवा चली, दीप जले काम रुके, चांद हंसा रंग जमा, रात बढ़ी ओस पड़ी, हून हंसे प्यार लिए, आ ही गई छा ही गई, सपनों भरी नींद।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका.

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

गाने को गाया है शान, प्रिया पाटीदार और विक्रम मॉन्ट्रोज ने। म्यूजिक दिया है विक्रम मॉन्ट्रोज और साजिद वाजिद ने, और लिरिक्स लिखे हैं मेघा बाली और शब्बीर अहमद ने। वेलकम टू द जंगल मूवी से सुनिए वेलकम टू द जंगल टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।